FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। राम है जीवन, कर्म है श्याम,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना अनूप चलोटा, मोहम्मद रफी, पंडित जसराज और साथियों को FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु में महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार। आलेख और वाचन डॉक्टर सत्यदेव आजाद का है।
1: इच्छा और जिज्ञासा जीवन के लक्षण हैं। जिसमें इच्छा का प्रस्फुटन होता है, जिज्ञासा एवं उत्सुकता का जन्म होता रहता है। नित्य नए कदम बढ़ाने, प्रगति करने की उत्सुकता और नित्य नई बातें सीखने, ज्ञान और योग्यताएं प्राप्त करने की जिज्ञासा होती रहती है, वो ही यथार्थ रूप में जीवित है। एक स्थान पर पड़े रहना, एक स्थिति में स्थिर रहना, एक ही दशा को स्वीकार किए रहना जड़ता का चिन्ह है। पत्थर, पहाड़ आदि जड़ वस्तुएं हैं। ये जहां जिस स्थिति में पड़ जाती हैं, पड़ी रहती हैं। पेड़ पौधे इत्यादि यो चेतन की तुलना में जड़ ही माने जाते हैं, पर उनमें जीवन तत्व का अभाव नहीं होता। यद्यपि वे एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते, तब भी

0: दिन दिन बढ़ते और विकास करते रहते हैं, नए नए फल फूल उगाते रहते हैं। पशु यद्यपि चेतन श्रेणी में माने गए हैं, तथापि वे मानसिक रूप से जड़ हैं। नैसर्गिक इच्छाओं की प्रेरणा के अतिरिक्त उनमें और किसी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता। नई कल्पनाएं, नए विचार अथवा नए जीवन का उनमें कोई परिचय नहीं है। वे जिस स्थिति में आदिकाल में थे, आज भी उस स्थिति में ही कर रहे हैं। अपनी पूर्व स्थिति में यथास्थान पड़े रहने वाले व्यक्ति एक प्रकार से ऐसी ही मानसिक जड़ता से आक्रांत रहते हैं, जो काम जिस श्रेणी में उन्होंने आरंभ किया उसी प्रकार उसी स्थिति में करते हैं। उसे विकसित करने, आगे बढ़ने अथवा उसमें कोई वांछनीय परिवर्तन लाने की जिज्ञासा उनमें नहीं होती। वे प्रातःकाल उठे यंत्रवत अपने आवश्यक नित्य कार्य निपटाए और बिना किसी उल्लास अथवा नई आशा से काम पर चले गए, उसी दायरे अथवा उसी परिधि में चक्कर लगाया और शाम को वापस घर आ गए। किसी दिन भी न तो वे कोई नई बात सीखते हैं और न किसी नवीनता का पुट प्रकट करते हैं। काम करने की ये रुचि और ये पद्धति घोर मानसिक जड़ता की सूचक है। ऐसी मानसिक जड़ता के रोगी व्यक्ति ही समाज में स्थान, अरुचिता और अनुरूपता को प्रश्रय देने वाले होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को देखकर अन्य लोग किसी समाज की सभ्यता, असभ्यता, उन्नति अथवा असमानता और विषमता का अंदाजा लगाते हैं और उसी के अनुसार उसका महत्व और मूल्यांकन करते हैं। पुरुषार्थी, परिश्रमी और कल्पनाशील व्यक्ति समाज में जितने सौंदर्य का अभिवर्धन करते हैं, उसे उस प्रकार के मानसिक जड़ लोग घटा देते हैं। समाज की अवमानना का दोष बहुत कुछ ऐसे ही जीवित मृत लोगों पर रखा जा सकता है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार। आलेख और वाचन डॉक्टर सत्यदेव आजाद का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

अभी आप सुन रहे थे सतीश पाठिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था राजेंद्र काचरू और साथियों ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा फूल गोभी की नर्सरी और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर

ये हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का। 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

बस कर 31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज सुनेंगे यात्रा ब्रज 84 कोस की। आज का स्थल होगा बठेन। आलेख और प्रस्तुत सहयोग होगा रश्मि शर्मा का। कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे हवेली संगीत में पद गायन का। वही हमारे श्रोता सुनेंगे समाचार प्रभात और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। जी हमारे श्रोता आनंद लेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमों का। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम। आज का विषय रहेगा नगर निगम द्वारा संचालित वृक्षारोपण एवं वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम। वार्ताकार होंगे राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा, और आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह।

15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से। 25 मिनट पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय रहेगा सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण। आलेख और वाचन हेमंत झा का होगा।

बजकर 30 मिनट पर स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण HPV टीकाकरण के संदर्भ में वार्ताकार रोहताज संघ से ओपी सिंह की बातचीत। साथ ही 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 12 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 का समय रहेगा ब्रजलोक गीत कार्यक्रम का। आज कलाकार होंगे बांके बिहारी शर्मा।

नमस्कार। 15 मिनट पर बहनों का कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम वनिता लोक। आज चर्चा का विषय रहेगा बरसात के मौसम में महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल। साथ ही चर्चा सुनेंगे स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ परिवार में महिलाओं की भागीदारी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, कर्मियों का मेकअप और जरूरी सावधानियां, बजट और बचत में आर्थिक स्वाभिमान। वार्ताकार होंगी अमिता शर्मा से, आप सुनेंगे सीमा सिंह की बातचीत। और 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, फूलगोभी जाड़े के समय की एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है, लेकिन अगर इसकी अगेती फसल अगर हम लगाते हैं तो इससे हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चूँकि अगेती फसल के लिए इसके लिए कुछ विशेष किस्में हैं जिनकी रोपाई हमारे किसान भाई अभी के समय में कर सकते हैं, यानी कि 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी नर्सरी किसान भाइयों को डाल देनी चाहिए थी। और इसके लिए जो उचित किस्में हैं उसमें पूसा कार्तिकी, पूसा दिवाली, ये दो किस्में हैं जिनकी की नर्सरी अभी आप डाल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनसे फूल प्राप्त हो जाते हैं, करीब 100 दिन बाद इनसे फूल मिलना प्रारंभ हो जाता है। बीज जो है किसी विश्वसनीय दुकान से ही आप खरीदें, और नर्सरी डालने के लिए जो बेड आपको तैयार करनी है 3x1 मीटर के आकार की बेड तैयार करें, और यानी कि 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी, और इस बेड की जो सामान्य सतह है उससे करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई लिए हुए होनी चाहिए। भूमि शोधन अगर संभव हो सके तो आप ट्राइकोडर्मा या कैप्टन या थीरम से कर सकते हैं। 300 से 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज 60 वर्ग मीटर की नर्सरी में लगता है, और 60 वर्ग मीटर की नर्सरी जो आप डालेंगे उससे 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई फूलगोभी की सफलतापूर्वक की जा सकती है। बीज शोधन के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर 1 किलो बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त रहता है, या अगर आप कैप्टन या थीरम से शोधित करना चाहते हैं तो 2.5 से 3 ग्राम कैप्टन या थीरम 1 किलो बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होता है। नर्सरी में इसकी जो बुवाई है बीजों की लाइन में करें, करीब 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक करके बीज को गिराएं, फिर इससे एक मिश्रण के द्वारा ढका जाए। मिश्रण जो होगा वो इस प्रकार का होगा, 2 भाग उसमें कंपोस्ट होगा, 1 भाग बालू और 1 भाग मिट्टी। तो इस मिश्रण से बीज को आप ढक देंगे, ऊपर से पतवार से ढक दें, अंकुरण होने तक पतवार से इसे ढके रहने दें, बाद में इसको हटाया जा सकता है। लगभग 3 से 4 दिन बाद पतवार को हटा देते हैं और सुबह शाम फिर 1000 से सिंचाई यानी कि पानी उसमें दिया जाता है। पौध को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए पॉलीथीन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। 45 दिन बाद पौध रोपने के योग्य हो जाती है, और उसकी रोपाई करके आप अगेती फूलगोभी से मुनाफा अच्छा ले सकते हैं।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी। विषय था फूलगोभी की नर्सरी और विशेषज्ञ थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है भीगी रात।

समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मंगेशकर के गाए फिल्म खानदान के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र

0: देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
1: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
1: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो एमबीबीएस की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
1: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
4: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की

0: समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सव पूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
1: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहेब आदि कैलाश और नानकमत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
2: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये ट्रेन से जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
5: FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
6: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय मंजुल कुंज निकुंज की रसपुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की वंशी वट की विपनेश्वर की सुखसाज की जय। ब्रज गोप निगोप कुमारन की विपनेश्वर की सुखसाज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय। जय नमन है ब्रज भूमि को जहाँ जन्म लियो नंद नंदन ने। धन्य है मथुरा धन्य है गोकुल धन्य है नंदगाम और अलौकिक मेरो ब्रज मेरो वृंदावन। और धन्य है ब्रज को माधुर आयु जुड़े सब ब्रज के वासी। तेरा परे लाख चौरासी ब्रज चौरासी कोस के जब ब्रज भक्त ब्रजवासी ब्रज को चाखन बारे प्रेमी रसिक सबन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज आपको सुनवा में यात्रा ब्रज चौरासी कोस की, स्थल है पठेन। तो आनंद लियो या यात्रा को।

जय श्री कृष्णा। यात्रा ब्रज चौरासी कोस के पिछले अंक में आपने किनी नंदगांव और बाकी समीपवर्ती दर्शनीय स्थलन की यात्रा, और अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। यह समय हम हैं खायरा यानी खादिर वन में।

सप्तमन्तु वनं भूमो खादिरं लोक विष्टुतं तत्र गत्वा नरो भद्रे मम लोकं स गच्छति। आदि बारा के अनुसार लोक प्रसिद्ध खादिर वन या संसार में द्वादश वनन में ते सप्तम वन है। हे भद्रे, जो यहाँ आते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। अजनौटी से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर दूरी पर यह गांव स्थित है। एक बार सखागण सहित श्री कृष्ण यहाँ गौचारण कर रहे हैं, तभी वहाँ बकासुर नाम को एक असुर आए के बिनकू खाए वे कूद दौड़ो। तो सखागण चिल्लाने लगे, खा गयो खा गयो। तब श्री कृष्ण ने बकासुर को मार के बिन की रक्षा की। यही काजे या को नाम खायरा कहलायो। यह गांव का पुराना नाम खादिरवन है। गांव में संगम कुंड, रासवेदी, कदम्ब खंडी, श्री लोकनाथ व श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की भजन कुटीर, श्री दाऊजी मंदिर और श्री केला देवी को मंदिर दर्शनीय है। यह स्थान पे श्री कृष्ण ने सखीन के संग अनेक खेल खेले हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ब्रज मंडल परिक्रमा काल में यहाँ आए। यहाँ से 2.5 मील उत्तर दिशा में भदावल गांव स्थित है, जहाँ नंद महाराज को स्थान यानी भंडार गृह हो और यही कारण या को नाम भदावल पड़ो। गांव में श्री राधावन बिहारी मंदिर, भदावल कुंड, श्री निताई गौड़, श्री राधा कृष्ण एवं श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शनीय हैं। नंदगांव से 4 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में गांव जावट है। जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर आयन ग्वालो यानी अभिमन्यु को गढ़ हो। प्राचीन काल में यहाँ 15 कुंड स्थित थे, परंतु अब इन कुंडन में बहुत से कुंड लुप्त है गए हैं। या कुंड के संबंध में कछु वर्णन, गांव के पूर्व उत्तर दिशा में किशोरी कुंड स्थित है और कुंड तट पर श्री किशोरी जी को मंदिर है। किशोरी कुंड के दक्षिण दिशा में सिद्ध कुंड है और गांव के दक्षिण दिशा में कुंडल कुंड, नीप कुंड स्थित है। यह कुंड के उत्तर दिशा में कृष्ण कुंड, वस्त्र कुंड स्थित है। बाकी पश्चिम में मुक्ता कुंड, आभूषण कुंड स्थित है। यह कुंड के पश्चिम दक्षिण दिशा में बछड़ा कुंड स्थित है। यह के उत्तर में डहर वन स्थित है। कुंड के उत्तर में युगल कुंड व के उत्तर दिशा में विवल कुंड स्थित है। यह कुंड के पश्चिम दिशा में बेरिया कुंड और व के उत्तर में पनिहारी कुंड स्थित है। यह कुंड के पश्चिम उत्तर दिशा में विवल कुंड और पूर्वोत्तर कोने पे लाडली कुंड स्थित है। यह कुंड के पूर्वोत्तर कोने पे नारद कुंड और यह के पूर्व में धर्म कुंड स्थित है। यह के दक्षिण दिशा में पाड़ल गंगा प्याल कुंड स्थित है। तुमौराते 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में धनसीगा गांव स्थित है। यह गांव को नाम धनसीगा धनिष्ठा सखी के जन्म स्थान के कारण पड़ो। गांव में धनिष्ठा कुंड, श्री राधा कृष्ण एवं श्री महादेव मंदिर दर्शनीय है। भदावल से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में तुमौरा गांव स्थित है। गांव में श्री राधा कृष्ण महादेव मंदिर विराजित है। तुमौरा से 1.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गौहारी गांव स्थित है। कोसी कला से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में

0: बराना गांव स्थित है। बराना से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में सुरवारी स्थित है। सुरवारी से 1 किलोमीटर की दूरी पर धर्मनगर स्थित है। धर्मनगर नगला से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में भद्र वन स्थित है। यह स्थान में सखीन ने श्री कृष्ण के भद्र अर्थात सुंदर अलंकार आदि द्वारा श्रृंगार करके श्री राधा रानी के संग मिलन करायो हो, यही कारण यह स्थान को नाम भद्रवन पड़ो। यह स्थान सुंदर बगीचान ते घिरो भयो है। बगीचान के मध्य में सुंदर श्री राधा कृष्ण युगल को विग्रह दर्शनीय है। परखर पूर्व से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में सांचोली गांव स्थित है। गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड दर्शनीय है। यह गांव में देवी मैया को एक विशाल मंदिर है, जहां चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में देवी को मेला लगे है, जहां में दूर दूर से श्रद्धालु आवे हैं। यह मेला अमावस्या से नवमी तक चले है। या समय या गांव की शोभा अत्यधिक बढ़ जावे है।
1: बहुत पहली बात है, कृष्ण जी का जब वहां से आना हुआ था द्वारका से, तो यहाँ आ गए नंदगांव। तो ये जो गांव था, ये सांचोली गांव एक मुसलमानों का गांव था। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई 2-4 घर थे, बाकी ये अंबिका वन के नाम से प्रसिद्ध है। ये अंबिका वन था, यहाँ पर झाड़ियाँ थी, बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे, अपने हर तरह के वृक्ष जैसे ब्रिज में रहते हैं अपने। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो गऊ चराने के लिए आते थे यहाँ, गऊ चराने के लिए आते थे। तो चंद्रावल सखी इनकी भक्ति थी, जैसे मीरा, तो भक्ति ये उनसे मिलने के लिए आती थी कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी से मिलने के लिए आती थी, तो कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी सुबह जल्दी, जैसे कृष्ण जी का यहाँ आना होता था गऊ चराने के लिए। तो यहाँ बहुत बनी में हिंसक जानवर भी थे, शेर, चीता, बघेर वगैरह, और तुम्हारे ये भालू ये होते हैं। तो उनके पिताजी माताजी कहने लगी, बेटी इस वनी में मत जाओ, इसमें बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, आपको मार देंगे। तो वो बोली, नहीं पिताजी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां पर दुर्गा जी का मंदिर है, मैं दुर्गा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हूँ। तो उनके पिताजी बोले, उन्होंने झूठ बोल दिया, जबकि दुर्गा जी का मंदिर था ही नहीं। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि भाई ये दुर्गा जी का मंदिर है, तो चंद्रावली बेटी हम भी चलेंगे आपके साथ दर्शन के लिए। अब जब दर्शन के लिए उन्होंने ठान दिया, तो चंद्रावल देवी जी एक संग घबरा गई, अब ये कैसे मेरी इज्जत बचेगी। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भगवान से विनती की और आंख मूंद करके खड़ी हो गई। कृष्ण जी अपनी दिव्य शक्ति से देख रहे थे, मान कि हाँ अब तो हमारे भगत पे भीड़ पड़ रही है। तुरंत प्रकट हो गए, कहो सखी क्या हुआ, मान ऐसे ऐसे हुआ, हाँ मेरे को सब पता है, पर आने दो, आपके पिताजी को भी और माताजी को भी दुर्गा जी के दर्शन ही होंगे। तो उन्होंने कही ठीक है, वन उसी जगह पर आना जिस जगह पे हम और आप मिलते हैं। तो वहाँ करील, एक करील पेड़ होता है, वृक्ष होता है पेड़, और एक होता है करील, और एक थी वो क्या बोलते हैं हींस, हींस की झाड़ियाँ थी। हींस ऐसी होती है जैसे बेर होते हैं ना, जैसे बेरों की झाड़ियाँ होती है वो। तो वहाँ आकर के मन ठीक है वहीं आऊंगी। तो आगे आगे चंद्रावली जी, पीछे पीछे उनके पिताजी और माताजी भी थी। आए, जैसे ही उसने अपनी योग माया से कृष्ण भगवान ने एक मढ़ी बनाई, छोटी सी मढ़ी बना करके स्वयं ही दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। तो दुर्गा रूप में प्रकट हो गए, सभी ने दर्शन किए। तो उन्होंने कहा, हाथ करके ऐसे इशारा करके, जो सीनरी बनी हुई है हमारी सामने वो उसी को इशारा कर रही है, देखो पिताजी ये मंदिर है, वो जो सीनरी बना रखी है ना वो उसी के उसमें बना रखी है, ये तो माता रानी का यहाँ। फिर उनके सामने ही कृष्ण जी जमीन में योग माया से जमीन में अंदर चले गए, मतलब जमीन में ही वो घुस गए। फिर उसने कहा, बोल महाराज आप कैसे करोगे, बहुत सखियां आपके पीछे तो भजन में और आपके प्रेम में वशीभूत हैं। मन कुछ नहीं, ये तो मेरी एक लीला है, कलयुग में इसमें से दुर्गा रूप में ही मूर्ति निकलेगी, निकलेगी तो नाम तो आपका होगा, परंतु पूजूंगा मैं, चंद्रावली जी का नाम है पूज कृष्ण।

0: जी रहे हैं। इधर साइड में ये ज्वाला जी हैं, इधर उनके सेवक लांगुरिया जी हैं, और पल्ली साइड में, मंदिर से पल्ली साइड में भैरव जी हैं, इधर हनुमान जी और शंकर जी भी हैं। इस तरीका से हमारे इस मंदिर का यहाँ पर
1: प्राकृतिक प्राकृत।
2: भाणोखोर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में बदनगढ़ गांव स्थित है और खिटविटा से 2.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गिडोह गांव स्थित है, जहां श्री कृष्ण बलराम को गेंद क्रीड़ा स्थल है। गांव के चारों तरफ 7 कुंड विराजित हैं। गांव की उत्तर दिशा में गेंदखोर स्थान, यह स्थान श्री कृष्ण श्री बलराम जी को विश्राम स्थल है। वर्तमान में यह स्थान पे श्री कृष्ण बलराम जी के मुकुट चिन्ह दर्शनीय हैं। गांव के ईशान में दूसरो गेंदखोर स्थान है, यह स्थान श्री कृष्ण को विश्राम स्थान हो। यहां 2 कुंड परस्पर 1 किलोमीटर की दूरी पर विराजित हैं। गांव के पूर्व दिशा में गौधर वन कुंड, दक्षिण दिशा में बेलवन कुंड, नैऋत्य कोण में गोपी कुंड, पश्चिम दिशा में जलभर कुंड, वायु कोण में विहार कुंड दर्शनीय हैं। और अब यहां से यात्रा आगे बढ़ रही है कोकिला वन की माऊ। यावट से 2.5 किलोमीटर उत्तर दिशा में कोकिला वन स्थित है। यह स्थान पे श्री कोकिल बिहारी जी को मंदिर और रत्न कुंड दर्शनीय है। यह स्थान पे आज साधु महात्मा निवास करो करे हैं। यह स्थान पे श्री कृष्ण जी कोयल की बोली में पुकारो करते, यही काजे या को नाम कोकिला वन कहलायो।
3: अजी ये शनिदेव का मंदिर है, इसकी कोई नहीं कहा था कि कब कितना पुराना है। और शनिदेव महाराज जी की जो मूर्ति है वो यहाँ प्रकट हुई है स्वयं। ये पीछे शनिदेव महाराज जी की जो पीछे ये कुंड है ना, यहीं से प्रकट हुई है। यहाँ महाराज जी को सपने में आए थे जब ये इन्होंने प्रस्थापित की है, सपने में दर्शन दिए थे शनिदेव महाराज जी ने, उसके बाद शनिदेव महाराज जी की मूर्ति है ये। ये 4 मुख की जो मूर्ति है ये बनवाई हुई है, लेकिन जो आगे का हिस्सा है, जो आगे का हिस्सा है वो शनिदेव जमीन में से जो निकले हैं वो ये।
4: जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, शनिदेव महाराज जी उनके दर्शन के लिए गए तो यशोदा मैया ने दर्शन न दिए, यहाँ तपस्या करने के लिए बैठ गए शनि महाराज। तो जब तपस्या में बोले, हे भगवान मुझे आपके दर्शन करने हैं, कैसे भी दर्शन हो। तो जब कृष्ण भगवान कोयल के रूप में आए, जब इसका नाम कोकलावन धाम पड़ा है, इसलिए कोकलावन बिहारी लाल की जय, शनि महाराज की जय।
2: लोहरवारी से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में भाणोखर गांव स्थित है। गांव में भ्रमर कुंड, खीर कुंड, श्री नंद महाराज की प्राचीन गौशाला दर्शनीय है। भाणखोर से 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में मेहरानो गांव स्थित है। यह गांव में श्री यशोदा माता को जन्म भयो। श्री यशोदा महारानी के नाम अनुसार यह गांव को नाम मेहरानो पड़ो। गांव में खीर सरोवर, श्री राम जानकी मंदिर, मंदिर में श्री राम लक्ष्मण सीता देवी, महादेव जी, श्री हनुमान जी, श्री यशोदा माता का विग्रह दर्शनीय है। नंदगांव के 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में लोहरवारी गांव स्थित है। गांव में लोहर कुंड और कुंड के तट पे श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर दर्शनीय है। और अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है बठेन कला में, जो कि कोकिला वन से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह स्थान पे श्री कृष्ण बलराम अपने सखान सहित विविध प्रकार के खेल खेलो करते और यहाँ बैठो करते, यही कारण यह स्थान को नाम बठेन भयो। यह गांव से 0.5 किलोमीटर की दूरी पे एक और छोटो गांव स्थित है, जाकू छोटी बठेन के नाम से जानो जावे है। यह गांव में कुंतल कुंड स्थित है और बड़ी बठेन में श्री दाऊ जी को मंदिर है। श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री बलभद्र कुंड दर्शनीय है। ब्रज में फागुन महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दूसरे दिन से 5-6 दिन तक हुरंगा खेल को आयोजन किया जाए है। यह गांव में बलभद्र कुंड के तट पे हर्षोल्लास के संग हुरंगा को आयोजन हुए है। हुरंगा को अर्थ है, हुरंगा को खेल देवर और भाभी के मध्य खेले जाने वालों अद्भुत खेल है। यह खेल में देवर के हाथन में एक बड़ो सो डंडा और कमर पे कपड़न की एक झोरी में भुर भुर और

गुलाल को मिश्रण दे रहे हैं। उधर भाभी के हाथन में एक छोटा परंतु मजबूत डंडा हुए है। भाभी देवर को देवर पे डंडा सो प्रहार करे है और देवर डंडा सो अपनो बचाव करे है और भाभी पे गुलाल फेंकते रहे है। यह खेल नगाड़े की थाप पे खेलो जाए है। यह खेल को देखने के कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आमे हैं। श्री सनातन दास गोस्वामी जी जब ब्रज में आए हैं, तब बिन्ने यहाँ भजनों करो हो। दई गांव से आधा किलोमीटर दूर पे चरण पहाड़ी स्थित है। यहाँ एक छोटा सा पर्वत है जहाँ पे गोप बालकन के चरण चिन्ह, सुरभी गाय के खुर के निशान, ऐरावत हाथी के पद चिन्ह, घोड़ा के खुर के निशान और श्री कृष्ण बलराम के मुकुट तथा लाठी चिन्ह विद्यमान है। यह पर्वत के निकट चरण गंगा नाम को एक कुंड है। कुंड के तट पर श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर दर्शनीय है। यह कुंड में स्नान करवे से मनुष्य को धन संपदा की प्राप्ति हुई है। यह पर्वत पे पद चिन्ह होवे के कारण एक बार श्री कृष्ण बलराम गौचारण लीला करते भाई यहाँ आए है। यहाँ आए के श्री कृष्ण ने अपने भुवन मोहनी मधुर बांसुरी की तान छेड़ दी। बंसी की तान सुन के सिगरी गाय, ऐरावत हाथी, घोड़ा और सभी सखागण यहाँ आए पहुँचे। यह बांसुरी की धुन भगवान ने बजाई के सभी के पद चिन्ह यह पहाड़ी पे पड़ गए। यही काज यह पहाड़ी को चरण पहाड़ी के में है। सभी पद चिन्ह आजो यहाँ दर्शनीय है। 84 कोस ब्रजमंडल में अनेक स्थान पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन करवे को मिले हैं, जैसे काम्य वन के चरण पहाड़ी पे, नंद गांव में चरण पहाड़ी पे, दही गांव के निकट पहाड़ के ऊपर काम्य वन अर्थात भोजन थाली में, वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में, गोवर्धन पर्वत पे जतिपुरा गांव के निकट स्थित श्री दाऊजी मंदिर में और राधा कुंड संगम स्थल पे। तो श्रोताओ, आज के अंक में इतना ही। अगली यात्रा में हम आगे बढ़ चलेंगे कोटवन की माओ। तो सभी श्रोतान को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

आपने आनंद लियो यात्रा वृक्षराशि कोष को, स्थल हो बठेन, ओ भी आलेख और प्रस्तुति सहयोग हो रश्मि शर्मा को। और अब आपको सुनवा में हवेली संगीत में पद गायन, रचना है चतुर्भुज दास की, राग विभास और स्वर है कोपी रसिक तैलंग को।

दास की रचना श्याम सुंदर भोर, राग विभास में स्वर गोपी रसिक तैलिंग या पदगायन के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता

0: में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय

0: रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
7: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
6: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
7: 1 से 31 जुलाई तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में ये पहला नगमा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म एतवार से, आवाजें हैं आशा भोसले और भूपेंद्र और साथियों की।

लता मंगेशकर, शाबिर कुंवर को भी आपने सुना फिल्म प्यार झुकता नहीं में, और आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को फिल्म साथ साथ में।

0: लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म प्रेम रोग के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं नगर निगम द्वारा संचालित वृक्षारोपण एवं वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम। वार्ताकार है राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा। आपसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
4: श्रोताओं, वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष जो पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं, या कहें कि मानवीय जीवन को अच्छा बनाने में वृक्ष एक मित्र की तरह है। जब भी जुलाई का महीना आता है या बारिश का महीना आता है तो हम वृक्षारोपण को एक महोत्सव के रूप में लेते हैं, और अब तो एक परंपरा सी हो गई है कि 1 से 7 जुलाई के बीच में हम वन महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाते हैं। तो अब ये समय चल रहा है। नगर निगम इस संदर्भ में कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो वृक्षारोपण को लेकर के अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है? मथुरा वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ। इस संदर्भ में आज हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार त्यागी साहब, आप सहायक नगर आयुक्त हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम में। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
5: नमस्कार आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
4: जी। तो ये जो वृक्षारोपण का एक पुण्य कार्य है, पवित्र कार्य है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें नगर निगम इसको किस तरह संचालित कर रहा है अपने एरिया में? कोई जो कार्यक्रम हो रहे हों, चल रहे हों, किस तरह से आगे की योजना है, परियोजना है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
5: बिल्कुल, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये वन महोत्सव का ये 1 जुलाई से 7 जुलाई का समय चल रहा है, और शासन के निर्देशों के क्रम में सभी विभाग इसमें वृक्षारोपण में सक्रिय हैं, लगे हुए हैं।

0: नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा भी अपनी तैयारी की गई है। इसमें हमारे द्वारा मथुरा और वृंदावन में जो हमारी कुछ भूमि चिन्हांकित की गई है, जहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये यमुना किनारे यहाँ मथुरा में और वृंदावन में काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर के और पिछले कुछ सालों में भी लगातार हमने वृक्षारोपण किया है। तो हम लोग देखेंगे जयसिंहपुरा के पीछे वाला एरिया है, आप जानते हैं वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 20,000 पेड़ पिछले 5-7 सालों में लगे हैं। इसके अलावा फिर हम घाटों की तरफ आते हैं, ध्रुव घाट वगैरह की तरफ है, वहाँ भी काफ़ी संख्या में पेड़ लगे हैं। इसी तरह से वृंदावन में लगे, यमुना के किनारे किनारे काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं।
1: कुछ ऐसी चीज़ें चिन्हित की हों जो नगर निगम का एरिया पिछले 5-6 सालों में जब नगर निगम बनाया तो उसका विस्तार दिया था, करीब 50-55 गांव जो है उनको शहर में हम लेकर के आए। तो वहाँ बहुत सारी जमीन सरकारी पड़ी हुई है, बहुत सारे एरिया पहले से ऐसे जहाँ घने पेड़ पौधे हैं, तो कुछ ऐसा किया होगा कि भाई कुछ बन नहीं तो उपबनी हम बना लें, लगा लें कुछ ऐसी चीजों को।
0: बिल्कुल, जैसे मैं बताऊं कि जहाँ भी हमारा प्रतिवर्ष का जो लक्ष्य रहता है वृक्षारोपण का, वो हम लोग जो खाली जमीन होती है, सरकारी जमीन है हमारी, बंजर है, ऊसर है या वृक्षारोपण की भूमि है, उस पर हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। इसमें कुछ विशेष योजनाएं हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 उपवन नगर निगम बना रही है। एक तो गोवर्धन रोड पे है, गोवर्धन चौराहे से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे एक भूमि है, लगभग 1 हेक्टेयर के
1: आसपास।
0: जी, और एक भूमि है ये रया रोड की तरफ जाते हैं, ईसापुर पड़ता है, वहाँ भी लगभग 1.25 हेक्टेयर भूमि उपवन के लिए। तो वो उपवन अच्छी तरह से सौंदर्यकरण के साथ और अच्छे प्रकार के पौधे लगा करके, जिससे लोगों के सुबह शाम घूमने के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा बन सके, ऐसा हम लोग बना रहे हैं। वहाँ पे गोवर्धन रोड वाला लगभग हमारा तैयार होने वाला है और ईसापुर वाले पे भी हमारा काम चल रहा है। मतलब
1: खाली जो जमीन पड़ी है उसका सदुपयोग भी हो जाए और ऐसा सदुपयोग हो जाए कि उस एरिया के रहने वाले बासिंदों को सुविधाएं मिल जाए, सुबह शाम के टहलने की व्यवस्थाएं हो जाए। इसमें अब जैसे मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है यहाँ खारी पानी है, तो इसमें कुछ ऐसी प्राथमिकता आप रख रहे हैं कि जो ब्रज से जुड़े हुए पौराणिक पौधे हैं जो यहाँ की मिट्टी पानी में जलवायु में सर्वाइव कर जाए आसानी से, जैसे कदम है, तमाल है, तो इन चीजों को शासन प्राथमिकता दे रहा है उसमें?
0: बिल्कुल, जैसे कि उपवन वाली जो योजना है इसमें जो इस प्रकार के पौधे रखे गए हैं, जैसे कदम है, तमाल है, जैसे आपने बताया जो यहाँ के स्थानीय रूप से हैं, और यमुना किनारे क्योंकि वहाँ पे पानी सही रहता है, काफी मात्रा में रहता है, तो वहाँ पे सभी प्रकार के पौधे हैं, खासकर जैसे बरगद के हैं, पीपल के हैं, जामुन के हैं, अर्जुन के हैं, इसी तरह के वहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि नगर निगम की तरफ से मियावाकी वन भी जो है लगाया जा रहा है। मियावाकी जो एक जापानी टेक्निक थी, एक जापानी वैज्ञानिक थे मियावाकी, उन्होंने ही एक खाली जमीन पे शीघ्रता से वन उगाने की एक तकनीक का आविष्कार किया था। उसी प्रक्रिया पे शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोग भी यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ बाद गांव में मियावाकी के लिए हमने जमीन चिन्हांकित की है और अब वहाँ पे काम शुरू हो रहा है।
1: वहाँ मियावाकी में क्या कुछ लेयर्ड पौधे रहते हैं छोटे?
0: जी, उसमें जैसे वन होता है तो वन में आप देखेंगे कि वहाँ घास भी है, छोटे पौधे हैं, फिर उससे बड़े हैं और फिर विशाल का पेड़ है। तो उसी तरह से 4 प्रकार के वहाँ पे पौधे जो है लगाने का प्रयास रहता है। जैसे घास तो अपने आप हो जाती है या जो घास वाले पौधे हैं, फिर छोटे पौधे हैं जिनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, तेजी से बढ़ते हैं, और इसी तरह से फिर थोड़े से मध्यम आकार के हैं पौधे, उनको लगाया जाता है। फिर जो विशाल हैं जैसे बरगद है, पीपल है, ऐसे पेड़ जो है लगाए जाते हैं, तो उसमें कुछ ही सालों में अगर उनकी केयर की जाती है तो कुछ ही सालों में बहुत अच्छा
1: रूप ले लेता है, सघन रूप ले लेता है उसमें। सर, इसमें जैसे वृक्षारोपण तो हम हर साल करते हैं और होता भी रहा है उसमें, लेकिन वृक्ष लगा देना ही सिर्फ एक काम नहीं है, उसकी देखभाल भी हो, वर्ष पर्यंत हो, क्योंकि जो ब्रज एरिया है आप देखते हैं उसमें कि एक ही साल में 3 ऐसे मौसम आते हैं कि जब हम 4 से 0 डिग्री टेम्परेचर की तरफ भी जाते हैं और 40+ में 50 की तरफ भी चले जाते हैं।
0: मथुरा का वातावरण बिल्कुल जो है उसको छूता है गर्मियों में, तीव्र गर्मी होती है।
1: तो देखभाल, हाँ, बड़ा वैसा प्रश्न है। तो इसमें कुछ एनजीओ को, कुछ और स्वयंसेवी संस्थाओं को कुछ एक जन अभियान करके अगर हम

0: कर ले, तो ऐसा भी लेकर के चलना है नगर
1: बिल्कुल,
0: निगम
1: हम
0: प्लान को?
1: इसमें दो प्रकार से देखभालों का प्रयास करते हैं। एक तो हमारे नगर निगम के ही अपने कर्मचारी हैं जो जैसे कि पार्कों में और जो मेन रोड है उसमें जो डिवाइडर पे हम लोग गमले या पौधे लगाते हैं उनकी केयर करना उनका काम रहता है, उनको प्रतिदिन जो है पानी देना या केयर करना, क्योंकि बड़े स्तर पर ये हम लोगों ने स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं
0: जी
1: ऐसी जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हैं, वृक्षारोपण के लिए कार्य कर रही हैं, उनके सहयोग से जैसे यमुना किनारे हमने काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ लगाए हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50,000 के आसपास पेड़ लगे हैं वृंदावन
0: जी
1: और मथुरा में, और उनके पिछले 5-7 सालों में काफ़ी बड़ा आकार भी हो गया है, बहुत अच्छा उपवन तैयार हो गया है। और इसके अलावा जो पार्क वगैरह हैं उनमें भी हम लोग स्थानीय जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके माध्यम से कोशिश करते हैं कि बाद में वृक्षारोपण के पश्चात भी उनकी
0: मतलब देखभाल
1: देखभाल हो
0: होती
1: सके।
0: रहे इसमें।
1: बिल्कुल
0: अभी
1: बिल्कुल
0: ये तो वृक्षारोपण की बात थी जो समसामयिक है, चल रहा है, आप
1: जी जी
0: काम करवा भी रहे।
1: जी
0: थोड़ा सा बिंदु जो समाज से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और नगर निगम के बहुत मतलब मुख्य कार्यों में आता है, वो है शहर की साफ सफाई, कूड़े निस्तारण का, उसका
1: जी जी
0: मैनेजमेंट
1: जी
0: का, ये
1: जी
0: भी
1: जी
0: जीवन का एक बड़ा पक्ष है। तो इस संदर्भ में भी नगर निगम की कुछ योजनाएं जो
1: जी
0: आप चला रहे हो
1: बिल्कुल, इसमें
0: इस पर थोड़ा
1: जो
0: सा बताइए।
1: इसमें जैसे कि जो कूड़ा निकलता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, तो उसमें जो इस तरह का प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाला कचरा है, कागज़ वाला कचरा है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि रैपर हैं, खाली पॉलीथीन वगैरह हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलती हैं, और वो जो है वेस्ट जो होता है वो ख़त्म भी आसानी से नहीं हो पाता, तो उसको समाप्त होने में भी सालों लगते हैं। तो उसमें नगर निगम ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और कंपनी उस कूड़े में से ये प्लास्टिक और ये कचरा निकाल करके, कागज़ वगैरह निकाल करके, और उससे बेंच बना रही हैं, जो बैठने की बेंच होती हैं,
0: जी जी
1: गमले बना रही हैं, और जो टी गार्ड होता है जो वृक्ष के चारों तरफ
0: सुरक्षा
1: लगाते हैं
0: देने के लिए
1: सुरक्षा,
0: शुरुआत में जी।
1: तो ये लगातार इसमें काम हो रहा है और लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में 1,000 के लगभग हमारी बेंच बन चुकी हैं, गमले बन चुके हैं, टी गार्ड बन चुके हैं, जिनको हम लेकर के और यहाँ पूरे क्षेत्र में लगा भी रहे
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: एक चीज़ और हम लोग प्रयास कर रहे हैं किचन गार्डन के रूप में, कि जैसे कि जो प्रत्येक घर में से जो गीला कूड़ा होता है जिसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कूड़ा होता है जैसे कि सब्जियों के या फलों के छिलके हैं, इसी तरह का जो वेस्टेज है उसका खाद आसानी से बन जाता है, वो वेस्ट जो है जल्दी से खाद बन जाता है, तो हम लोग का प्रयास है कि किचन गार्डन के रूप में हर घर में शुरू किया जाए। हमारी नगर निगम की टीम है, आईसीसी टीम है, वो जाकर लोगों को थोड़ा सा बताती हैं, समझाती हैं कि घरों से निकलने वाले इस तरह के कूड़े को घर में ही खाद बना करके और घर में ही पौधों में उसको दिया जाए, तो ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, केवल कुछ जैसे बाल्टी या ड्राम जैसी चीज़ लेकर के उसमें डाल करके, अगर कच्ची जगह भी नहीं मिल पाती है
0: जी जी
1: और
0: जी
1: उसमें कुछ इस तरह की मिट्टी या अन्य चीज़ें
0: मिला
1: उस
0: करके,
1: मिला
0: मिक्सर में
1: करके,
0: कहीं लेयर बना करके
1: बिल्कुल
0: उसमें। जी
1: बिल्कुल,
0: जी
1: तो
0: तो उसकी मतलब एक टेक्निकल ऐसे डालें, इतनी लेयर में डाल दें, इतना मिट्टी डाल दें, इतना
1: बिल्कुल
0: सूखा कूड़ा
1: बिल्कुल
0: डाल दें, तो उसमें घर में जो
1: घर में
0: खाद हम
1: बिल्कुल
0: बना सकते हैं
1: बिल्कुल
0: कंपोस्ट।
1: बना सकते हैं और उसका बड़ा अच्छा उपयोग हो जाता है,
0: जी जी
1: और अपने घर में एक पौधों के लिए अच्छा खाद मिल जाता है, तो वो भी हम लोगों को कोशिश करते हैं कि इस तरह से हो जाए।
0: जी जी जी तो मतलब जो कूड़ा उठाने के साथ साथ कूड़े को घर में ही कैसे
1: घर
0: निस्तारित
1: में
0: किया जाए और
1: बिल्कुल
0: कैसे उपयोगी बनाया जाए, और घर के जो छोटे आसपास की जो जगह है वहाँ कैसे उसको उपयोगी तरीके से कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: जिससे पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाए
1: संरक्षण हो जाए।
0: और कुछ प्लांट अगर आपके आसपास रहते हैं तो उसमें सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि मन को जो सुकून मिलता है, तो
1: बिल्कुल
0: व्यक्ति एक मतलब जो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। तो
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: ऐसी व्यवस्था कि हम जहाँ शहर में रहें, घर में रहें, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट में जो आती है वो
1: बिल्कुल
0: निकल करके
1: बिल्कुल
0: आए।
1: बिल्कुल,
0: ये
1: देखिए ये
0: जी
1: प्रकृति में ये है ही कि जो हमारा वेस्टेज है इस तरह का ऑर्गेनिक वेस्टेज है, हमारा ऑर्गेनिक कूड़ा है जो ठोस कूड़ा नहीं है, प्लास्टिक कचरा या लोहे की ऐसी चीजें नहीं है, ऑर्गेनिक को बस हमें प्रकृति तक पहुंचाना है, तो जल्दी से मिट्टी के माध्यम से या अन्य चीजों के ऑर्गेनिक के माध्यम से वो खाद के रूप में परिवर्तित और पौधों के लिए वो बहुत उपयोगी होता
0: जी
1: है।
0: जी जी जी तो ये वृक्षारोपण का कार्य और वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य नगर निगम लोगों के सहयोग से उन्हीं के तरीके से करने की

0: कोशिश कर रहा है कुछ चलते चलते और कहना चाहें।
1: बस मैं ये श्रोताओं से,
0: नागरिकों से
1: मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि पर्यावरण में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से भाग लेकर के कोशिश करें कि वृक्ष लगाएं, वृक्षों की देखभाल करें, कम से कम एक परिवार एक वृक्ष लगाए।
0: जी जी,
1: तो ये भी बहुत अच्छा है। और किचन गार्डन की तरफ थोड़ा सा आए कि हम अपने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग करते हुए और गीले कूड़े से थोड़ा सा खाद बना के और एक किचन गार्डन की जो है परंपरा शुरू करें। नगर निगम ऐसे नागरिकों को, ऐसे परिवारों को सम्मानित भी कर रहा है।
0: जी जी,
1: और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है,
0: एक आज की आवश्यकता है ये।
1: अगर आपके मोहल्ले में एक परिवार या एक व्यक्ति भी ऐसा कार्य करता है तो अन्य लोगों पर भी उसका अच्छा प्रभाव होता है। तो धीरे धीरे वही चीज, किचन गार्डन, गार्डन पौधों के साथ रहना और घर में पौधे रखना और फिर उसमें घर के ही ऑर्गेनिक कूड़े को खाद के रूप में बदल के उसमें इस्तेमाल करना,
0: ये एक अच्छा कार्य है उसमें। तो श्रोता बंधु, आप थे श्री राकेश कुमार त्यागी साहब, सहायक नगर आयुक्त मथुरा वृंदावन, और जानकारी दे रहे थे जो वृक्षारोपण का पावन पुनीत कार्य हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में है, मूल्यों में है, उसको करना है। पौधे लगाने ही नहीं है, उनकी हमें देखभाल भी करनी है, और जो कूड़ा हमारे आसपास घर परिवार में डे टू डे निकल रहा है उसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। नगर निगम तो उसमें आगे आ ही रहा है, बहुत सारी तरीकों से कूड़ा उठा भी रहा है। घर में हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे पास पुरानी बाल्टियां हैं, टब हैं, या जो प्लास्टिक के छोटे मोटे कंटेनर हैं उनमें हमारे आसपास सूखी पत्तियां हैं, मिट्टी है, फिर वो हमारा घर का कूड़ा जो किचन में निकलता है उसका इस्तेमाल कर लें, तो कंपोस्ट बना करके अन्य पौधों को भी हम खाद पानी दे सकते हैं और उनको बड़ा करने में सहयोग कर सकते हैं। त्यागी जी, आप आए, जानकारी दी, अपने विचार और वाणी से हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नगर निगम द्वारा संचालित वृक्षारोपण एवं वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम। वार्ताकार थे राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त मथुरा, और आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
3: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
4: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इसे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने

रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।

0: और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चिंतावाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
1: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ता है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। ऐतिहासिक झांसी के लिए परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर

0: स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान, विकास का आधुनिक मंदिर, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी, विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे, ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता नमूना, ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
4: विकास का एक पक्ष यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी, चरागाह, ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप किसानों के लिए मैदानी खेतों में बाढ़ या सूखे की स्थिति बन गई है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि देश को प्रदूषण, वन विनाश और मरुस्थलीकरण की स्पष्ट जीवन संकटमयी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। यदि समय रहते हम अपने तुरंत के स्वार्थों में लिप्त होकर गांवों में पेड़ पौधों को काटते रहे तो पर्यावरण का पतन हो जाएगा और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव औसत तापमान को बढ़ाकर हमारे कृषि प्रधान देश को नष्ट कर देगा। और यह भी सुनिश्चित है कि स्थानीय संसाधनों व जंगलों के क्षीण होने पर इसका विस्तृत क्षेत्रों पर परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। अतीत में हम अपने ग्रामीण संस्कृति व पर्यावरण को शुद्ध रखने के प्रति संवेदनशील रहे हैं, लेकिन अब हम परिस्थितिवश और परिवेशगत तनावों को पैदा कर वनों को पतन करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। अतः हमारी सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक वानिकी की योजनाओं का निर्माण करते हुए उसकी सफलता के साथ क्रियान्विति प्रभावशाली ढंग से की जाए। सामाजिक वानिकी एक विकासात्मक आयोजन है जिसमें नीति निर्धारण और परियोजना क्रियान्विति के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकार, भूमि

0: का लाभ और सहभागिता को विस्तृत रूप प्राप्त होगा। हमारे देशवासी वैदिक काल से वृक्षों एवं नदियों को पूजते आ रहे हैं। तुलसी, वट, पीपल, बेल व आंवला आदि वृक्षों की आज भी हम पूजा करते हैं। जब जनसंख्या व संसाधनों में संतुलन था, तब प्रत्येक गांव, कस्बा, शहर अपनी अपनी सीमाओं पर वन क्षेत्रों को समेटे था। बढ़ती जनसंख्या व प्रगति के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए वनों को द्रुत गति से काटा गया, जिसके फलस्वरूप वह भूमि खेती के लिए काम में आने लगी या बंजर ही पड़ी है। आज बचे कुचे वन भी विनाश की कगार पर खड़े हैं। अतः सामाजिक वानिकी योजना को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उसके लिए ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्रों के भीतर एवं सीमाओं पर वन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को वन उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय रूप से संभव हो सके। इस परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार भी प्राप्त होगा तथा वन क्षेत्र विकसित होने से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, इसके साथ हमारी वन उपज की जरूरतों की भी पूरा किया जा सकेगा। इससे योजना पर किए गए खर्च का लाभ राष्ट्र को प्रचुर मात्रा में मिल सकेगा तथा पर्यावरण भी संतुलन रहेगा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण, आलेख और वाचन था हेमंत झा का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता, राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण, टीकाकरण के संदर्भ में वार्ताकार रोहिता सिंह से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह, एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: साथ हैं डॉक्टर रोहितास सिंह तेवतिया साहब, आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं मथुरा में। एक ऐसा कार्यक्रम जो निश्चित तौर पर कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन इलाज से बेहतर सुरक्षा होती है, बचाव होता है। तो प्रतिरक्षण का मतलब यही है कि जब हम टीका लगवाते हैं तो किसी भी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता एक व्यक्ति में आ जाती है, लेकिन अगर ये प्रतिरक्षा हमारे पास नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, तो निश्चित तौर पर कोई भी बीमारी जो हो सकती है उससे लड़ने की क्षमता हमारी कमजोर पड़ जाती है। तो आप दो टेलीफोन नंबर आपको बताएं, 2530135065 कोड लगा लीजिएगा, और एक व्हाट्सएप नंबर है 9412225575, इस पर दोनों लाइनें खुली हुई हैं। जो भी सुझाव हैं, जो भी जानकारी आप चाहते हैं, जो प्रश्न करना चाहते हैं, जो हमारा जिले का ऑफिस होता है सुरक्षा का, सीएमओ ऑफिस जिसको जानते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर रोहिता सिंह जी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत सर, प्रणाम कर रहा हूं मैं आपको।
5: नमस्कार सर, और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार
4: जी। राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, नियमित तौर पर चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है, बीमारी कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीके आ गए हैं जो सरकार की तरफ से एक रोस्टर बना दिया गया है कि बच्चा पैदा होते ही उनको लगवाना ही है, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में हो, घर में हो, परिवार में हो, या कैसे भी आपका जन्म हुआ हो। तो थोड़ा सा बताइए कि इस कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है, और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, टीका हैं जो इस नियमित टीकाकरण में आते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए जानने वालों।
5: जी सर्वप्रथम आपने जो प्रश्न किया, इसका उद्देश्य जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे जो

0: ऐसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिनसे उनकी मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये टीके सरकार द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध हैं, और इनमें से जो प्रमुखता से हम 12 बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके लगाते हैं, जिसमें बच्चे की पैदाइश से लेके, जन्म से लेके और 16 वर्ष तक की आयु तक के, और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो गर्भावस्था के दौरान भी उनको टीके की सुविधा मिलती है, जिससे कि उनके साथ साथ जन्म लेने वाले बच्चे को भी एक सुरक्षा कवच मिलता है।
1: बना हुआ है कि भाई जन्म लेंगे तो पैदा होते ही ये वाले टीके लग जाएंगे, फिर एक जो कहते हैं कि जैसी गर्भवती होती है, रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो वो है वो कार्ड बना दिया जाता है, उस कार्ड को आप फॉलो करते रहिए, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत यह है कि हमारी आने वाले की, नवजात की या माता बहनों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, ये इसका उद्देश्य आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही इंगित भी किया कि एक जो जिसको हम टीकाकरण सारणी कहते हैं, आपने रोस्टर शब्द का प्रयोग किया और साथ में आपने कार्ड के बारे में जिक्र किया, तो इसमें MCP कार्ड है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, जो हम फिजिकली कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। साथ में जो सरकार के द्वारा एक पोर्टल है, यूविन पोर्टल, पूर्व में जब वो कोविड का टीकाकरण हुआ था तो कोविन पोर्टल जो है सभी लोग फेमस हुआ था, उसी के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर सरकार के द्वारा यूविन पोर्टल को रोल आउट किया गया। ये पिछले 3 वर्ष से यूविन पोर्टल है और प्रत्येक बच्चे को इस यूविन पोर्टल पर हम दर्ज करते हैं, जिससे कि वो हमारी देखरेख में, हमारे परव्यू में आ जाए, और उसमें जो टीकाकरण सारणी है, टीकाकरण सारणी के अनुसार फॉलोअप करके उसको टीके की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
1: जी, तो कुछ जो टीके चल रहे हैं उन पर अगर आप प्रकाश डालें कि किन किन बीमारियों से हम, कौन कौन सा टीका हमें सुरक्षित कर देता है एक बच्चे को, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सर, इसमें जो 12 बीमारियों से 11 प्रकार के टीके हैं, लेकिन अभी जब ये बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है, मानसून आ जा रहा है, और मानसून में एक जो बीमारी प्रमुखता से आती है निकल करके, गलघोटू की, जिसे आम भाषा में गलघोटू और वैसे साइंटिफिकली डिप्थीरिया की बीमारी कहते हैं, इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चे के जो है 6, 10 और 14 सप्ताह पर पेंटा की वैक्सीन लगती है। उस पेंटा में 5 प्रकार के टीके होते हैं, उसी में डिप्थीरिया का टीका भी शामिल होता है। तत्पश्चात फिर इसमें DPT बूस्टर्स की 2 डोज लगती है, जो 1.5 वर्ष और 5 वर्ष पर होती है, और इसके बाद जब बच्चा 10 वर्ष की आयु का हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु पर हो जाते हैं तो TD का टीका। तो दरअसल ये 7 बार उसको खुराक लेनी होती है, तब जाके उसको डिप्थीरिया से बचाव मिलता है। ये पिछले 3 से 4 वर्ष के, अगर मैं जनपद की भी चर्चा करूं, काफी बच्चे इसमें ग्रसित हुए थे और इसमें मृत्यु की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं अगर शुरुआती समय में इसको
1: नहीं लगवाया,
0: चिकित्सक की टीका नहीं लगवाया, तो बीमारी होने की संभावना है, और बीमारी अगर हो गई है समय पर सही इलाज ना प्राप्त किया जाए तो फिर मृत्यु की संभावना से तब इनकार नहीं कर सकते। तो जो आपने अभी जैसे कहा कि भाई इसमें और भी हैं महत्वपूर्ण टीके, जो बीमारी है जैसे खसरा की, मीजल्स रूबेला,
1: जिसे हम, जिसको MMR अपन नाम देते हैं उसमें,
0: जी MR हमारे यहाँ MR है, जैसे मीजल्स रूबेला, 2 बीमारियों से बचाव के लिए टीका है, ये सर्दियों में अक्सर इसका प्रसार फैल जाता है। तो प्रमुखता से अगर इन दोनों की बात करूं, और वर्तमान में इस वक्त जो है, जब हम आज बैठे हैं दिनांक में, 28 जून से 6 जुलाई तक पल्स पोलियो NID अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष के सभी बच्चों को 2 बूंद की खुराक उन्हीं के घर पर पहुंचकर, हमारी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारी कार्यकर्ताएं हैं, वो पहुंच रही हैं उनके घर में और उनको 2 बूंद पोलियो की दवा पिला रही हैं। यह कार्यक्रम पोलियो रविवार से शुरू हुआ था 28 जून से, तत्पश्चात सोमवार से लेकर और आज शुक्रवार तक घर घर जाकर के हुआ है। इस दौरान यदि कोई बच्चा किसी कारण से छूट गया है, माने कहीं उस दिन नहीं थे, घर चले गए या और XYZ कारण है, तो उसके लिए फिर सोमवार को BT में एक्टिविटी होगी 6 जुलाई को हमारी, और सभी बच्चों को हम कवर करेंगे, से 5 वर्ष के बच्चों को।
1: जी जी, तो मतलब ये पल्स पोलियो का एडिशनल आपका चक्र है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अक्टूबर से फरवरी मार्च तक पल्स पोलियो के लगाए जाते हैं, जन्मजात तो होता ही कि जन्म हुआ तो हम पल्स पोलियो पिला देते, लेकिन ये एक एडिशनल आप लेकर के आ रहे।
0: जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसमें बिल्कुल क्लैरिटी करना चाहूंगा श्रोताओं को भी कि जो हमारा नियमित राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, उसमें भी हम OPV की दवा देते हैं पोलियो की, साथ में एक टीका इंजेक्शन भी लगता है जिसे FIPV कहते हैं, वो रूटीन इम्यूनाइजेशन मतलब नियमित टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत है। उसके अतिरिक्त एक ये एडिशनल खुराक है, पूर्व में जब 10-15 वर्ष पहले साल में कम से कम 11 राउंड होते थे, 12 महीने में 11 राउंड होते थे, 11 राउंड से मैं जो है हर महीने
1: जी जी
0: ये दवा दी जाती थी, लेकिन अब चूंकि पोलियो से मुक्त हो चुका है भारत, 2014 में डिक्लेयर हो चुका है कि हम पोलियो मुक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अब ये साल में एक बार राउंड होता है

0: और जो आप अक्टूबर नवंबर कह रहे थे पिछले वर्ष दिसंबर में हुआ था, पिछले तीन
1: हाँ
0: वर्षों से दिसंबर में हो रहा है,
1: जी
0: अब
1: जी
0: वर्तमान में इस जून के महीने में
1: इसको
0: किया जा रहा
1: लेकर
0: है।
1: के आए हैं
0: जी
1: इसमें।
0: सर, जी सर,
1: इसमें और जो आपने जोड़ा है जिसको हम HPV बोलते हैं, ऐसी बच्चियां जो 14 साल तक की हो रही हैं, आगे पारिवारिक जीवन में जाएंगी, तो आपने देखा होगा महिलाओं में कैंसर का जो रोग है वो काफी प्रिवेल हो रहा है, और उसमें सर्विक्स वाला जो वो काफी निकल करके आ रहा है। तो इस पर भी चूंकि एक वैक्सीन आ गई है, क्या उसको इस टीकाकरण के कार्यक्रम से प्रशासन ने जोड़ा है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी वर्ष 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम का अजमेर से शुरुआत की गई थी।
1: जी
0: इसमें यह परिकल्पना की गई है सरकार के द्वारा, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा,
1: जी
0: कि हमारी 14 वर्ष की बच्चियां हैं जिसका 14वां बर्थडे उसने मना लिया है
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अभी 15वां बर्थडे ड्यू है, मनाया नहीं है, उसको यह टीका लगना है।
1: जी
0: एक ही टीका लगेगा और बाई बाजू पर। और इससे टीके से फायदा क्या मिलेगा? टीके से फायदा यह मिलेगा कि बच्ची को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की
1: जी जी
0: रहेगा।
1: कुछ श्रोता अब हमसे जुड़ने चाहें तो आप ले लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: सर, बिल्कुल
1: जी
0: सर।
1: बताइए। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: सर, ओपी सर जी को नमस्कार। मेरा
1: प्रणाम कर रहा हूँ भैया, नाम बताएं।
2: सर, मैं आपका एक नियमित श्रोता अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से।
1: अड़िंग से सर? ठीक है, बताइए। ये कार्यक्रम नियमित टीकाकरण पर चल रहा है, रोहिताश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी या टीकाकरण अधिकारी, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अब प्रेजेंट में टीकाकरण अभियान चल रहा है,
1: जी
2: तो सभी जानते हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो ये अवेलेबल है, जैसे कि जो पिछली उम्र में निकल चुके हैं, यानी 19 के दौर में जब इतना टीकाकरण नहीं था, तो आने वाली जैसे हमारे समय आएगा के लिए क्या जैसे युवाओं के लिए 25+ वालों के लिए भी कोई योजना है ऐसी टीकाकरण की?
0: ठीक है,
1: जी
0: मैं
1: बताएं।
0: समझ गया आपका सवाल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टीके उपलब्ध है ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड से, और एक जो एनटैगी है नेशनल कहना
1: एजेंसी
0: चाहिए,
1: जो होती
0: जो एक थिंक टैंक है,
1: है।
0: और वहां इसका विस्तार से चर्चा होने के पश्चात फिर निर्णय किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत सरकार की, तो वहां ये तय होता है। चूंकि ये टीके जिस उम्र में लगाए जा रहे हैं उस उम्र में ज्यादा इफेक्ट इनका रहता है, इसलिए उस उम्र में लगाने की इनकी एडवोकेसी की जाती है। मसलन मैं अगर आपको कहूं, रोटा वायरस वैक्सीन जो हम दे रहे हैं वो 10 से बचाव करती है बच्चों में सर्दियों में,
1: जी
0: इसकी प्रेवलेंस 6 महीने के बच्चों में ज्यादा रहती है, तो इसलिए यह टीका 1 साल तक के बच्चों के लिए ही है। इस 1 वर्ष के बाद अगर बच्चा है तो उसको रोटा वायरस वैक्सीन टीका लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अब ये बीमारी होने की इतनी संभावना नहीं है,
1: मतलब इम्यूनिटी वो डेवलप
0: डेवलप हो जाती
1: हो
0: है, सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसकी, सर्वाइव कर गए तो सेल्फ इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई। लेकिन आपने कहा कि जो बड़े हो गए, वयस्क हो गए, तो उसमें भी है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो महिलाएं हैं जो गर्भवती होती हैं तो उनको टीडी का वैक्सीन लगता है जिससे कि उनको टिटनेस से बचाव मिले। देखिए पूर्व में जब आपने बहुत पहले जानते होंगे कि टिटनेस के बच्चे पैदा हुए और उनको टिटनेस की शिकायत मिली, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, हम पोलियो से मुक्त हो चुके, न्यूनेटल टिटनेस से मुक्त हो चुके हैं, तो ये
1: क्योंकि वो गर्भवती महिला को ही
0: लग
1: है, तो
0: जाता है, बच्चों को भी नहीं जाता है।
1: आती, जी, जी।
0: तो इसलिए इसमें अब जब पूर्व में कोविड हुआ था तो कोविड में आप जानते ही हैं सभी को टीके की सुविधा गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई थी, भविष्य में अगर किसी तरह का रहता है तो वो सभी के लिए होगा, तो ऐसा हम सोचते हैं।
1: डॉक्टर साहब बड़ों के बारे में पूछ रहे थे, हम बात कर रहे थे एचपीवी वैक्सीन 14 साल की बच्चियों वाले पे, इस पे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। जी
0: बिल्कुल सर, ये वैक्सीन जो है नई वैक्सीन नहीं है,
1: जी
0: पूर्व में ही सन 2008 से हम इस वैक्सीन को ले रहे हैं और ये 155 देशों में इस वैक्सीन को दिया जा रहा है।
1: जी एक श्रोता फिर से जुड़ रहे हैं। हेलो
3: हेलो साहब, मैं राजकुमार सैनी बोल रहा हूँ, बिरला मंदिर क्षेत्र से।
1: जी जी बताइए राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हैं?
3: मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं,
1: हाँ,
3: ये इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जैसे हम अनुमान देखते हैं कि बच्चों में साइड इफेक्ट हो जाते हैं कुछ, मतलब बुखार तेज आ जाता है?
1: कौन सी वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं आप? ये बच्चियों की बात कर रहे हैं?
3: जी जी
1: जी जी डॉक्टर,
0: हाँ देखिए ये 14 वर्ष की बच्चियों के लिए जो वैक्सीन दी जा रही है ये पूरी तरह से सेफ है, 155 देशों में इस वैक्सीन को दी जाती है, गार्डासिल 4 है, सन 2008 से इसको दिया जा रहा है, पूर्णतः सेफ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए क्या होता है, 14 वर्ष की बच्चियां अभी समझदार उतनी हो रही होती हैं, उतनी समझदार नहीं होती हैं, अभी क्या होता है सुई वाला टीका लगना है और बाहर वो कमरे के बाहर बैठी हैं और सुबह नाश्ता करके नहीं आई है मान लीजिए, और गर्मी भी पड़ रही है, पसीने भी आ रहे हैं और थोड़ा सा उमस हो रखी है, और वो उन्होंने देखा कि अंदर जाने से पहले ही टीका लगा और वो ऐसे लगा कि ये जो है गिर गई, तो क्या होगा कि टीके से गिर गई, ऐसा नहीं होता है। दरअसल हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि नाश्ता करके आए, पेट अपना वो हो और थोड़ा सा अलग बैठे, मतलब टीके को देखते देखते भी उनको चक्कर आने लग जाते हैं बच्चियों को,
1: कई बार ऐसा होता है, और फिर ये लगता ही है कि शायद

0: उससे हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको टीके को देते हैं
1: के माध्यम से लग रहे हैं या फिर ये जिला अस्पताल में जाकर के लगेंगे, क्या इसका मतलब कैसे?
0: मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए, आपने अभी पूछा कि इससे परेशानी हो सकती है, तो हल्का फुल्का बुखार या हल्की सी वहाँ हो सकती है, तो इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल की दवाई भी हम डिस्पेंस करते हैं। आपने पूछा अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि आप सुविधा कहाँ उपलब्ध है। तो ये दोनों ही तरीके से सुविधा उपलब्ध है, जिला अस्पताल में और हमारे जो 12 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं, हमारे 10 ब्लॉक में हैं, जैसे वृंदावन सीएससी पर भी है। तो यहाँ जो हर दिवस में हम इसको प्रयास कर रहे हैं टीके को लगाने का। दूसरा, हम ये जो है तीसरे शुक्रवार को जो समाज में ही जाकर, हमारा वैक्सीनेटर समाज में ही बैठता है, कम्युनिटी में ही बैठता है, और वहाँ वो पहले से ही यूविन एक ऐप है, यूविन ऐप पर आप जाकर के देख सकते हैं कि नजदीक में कहाँ पे टीके लग रहे हैं। जैसे कोविड में हम अपॉइंटमेंट ले लेते थे और हम अलॉट करा लेते थे अपने लिए कि हम यहाँ जाएंगे और जाएंगे बताएंगे।
1: आधार कार्ड के लिए जो चल रहा है सिस्टम, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। और
2: अच्छा डॉक्टर साहब, यही पूछ लूँ, अशोक जी राजकुमार जी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है क्या? उसमें कोई सर्टिफिकेट या कोई आधार वाधार कुछ?
0: इसमें देखिए, आधार है तो आप आधार के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में जाकर के स्वयं का अपना रजिस्ट्रेशन करके और आप अपॉइंटमेंट ले लें, फिर आपको कोई आधार वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और उसमें आपके पास जो भी ओटीपी पहुंचता है वो आपने लिया है, तो जिससे कि आपकी कंसेंट भी आ जाती है उसमें। लेकिन अगर आप जगवाने जा रहे हैं तो आधार ले जाएं, जिससे वो यूविन पर आ जाएगा और आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि आपने ये टीका लगवाया।
2: अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं?
1: बच्ची है।
0: हाँ जी,
1: अभी 14 साल की मेरी बच्ची है, तो मैं उसको लगवा सकता हूँ?
0: 14 वहाँ बर्थडे उसने मना लिया है, ये मनाएंगी अभी?
1: अभी मनाएगी सर।
0: कितनी तारीख को?
1: ये आई थिंक उसमें मनाएगी, अगस्त में।
0: ठीक ठीक, कितनी अगस्त को?
1: करीब 17 अगस्त को।
0: 17 अगस्त को, वो 17 अगस्त को जब बर्थडे मनाएंगी तो 17 अगस्त से ही उनको वो इसकी लाभार्थी हो जाएंगी। 18 अगस्त को ही आप जाएंगे तो उनको वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि यूएन पर पोर्टल पर वो 17 अगस्त से पहले, जैसे आज जाएंगे, आज आप बैठे हुए हम 3 जुलाई में, तो वो यूएन पोर्टल पर लेगा ही नहीं और हमारा वैक्सीनेटर उसको टीका नहीं तब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक साइंटिफिक मेथड है जिससे कि हम 14 से 15 वर्ष की बच्चियों को ये टीका उपलब्ध हो पा रहा है।
1: मतलब जीवन भर बच्ची, मतलब ये सुरक्षित
0: जीवन भर रहेंगी। देखिए आप, मैं बताऊं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को कि जो महिलाओं में कैंसर है, सबसे ये दूसरे नंबर का कैंसर है, पहला उनकी छाती का कैंसर, स्तन कैंसर, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। और 30 वर्ष की उम्र के पश्चात किसी भी महिला को होने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं। और जो 97-98% केसेस में वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और ये वैक्सीन अगर इन बच्चियों को अभी से लग जाती है तो उनको वो एक्सपोजर होने पर इम्यूनिटी रहेगी, तो वो ऐसी इनको ये कैंसर होने की, डेवलप होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी।
2: मतलब बहुत एक संभावना है, उसको खत्म हम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल खत्म
2: कर रहे हैं, जीवन में मिल रही है।
0: अगर सर एक
2: बड़ा कदम जो है,
0: एक बच्ची को अगर भविष्य में इस तरह कैंसर की स्थिति हो रही है, तो वो बच्ची ही नहीं, जब वो 35-40 वर्ष होगी तो उसके परिवार, उसके परिवार के भरण पोषण पर और उसके आमदनी पर सब पे इम्पैक्ट रखती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और कैंसर तो एक बीमारी भी ऐसी जिसको देख करके ही व्यक्ति को ऐसा लगता है उसमें, तो एक बहुत बड़ा कदम है। हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे, ये HPV वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर तेवतिया बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन तरीका यही है कि 14 साल की अगर बच्ची आपकी हो रही है तो फिर पूरा 1 साल पड़ा हुआ है, उसमें तुरंत उसको जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका लाभ उठाएं। उसमें चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? तो मैं दूसरी उस पर आ रहा हूँ, हमारे श्रोता हमसे जुड़े व्हाट्सएप के माध्यम से। आप लिख रहे हैं कि छोटे बच्चों को कितनी उम्र तक कितने टीके लगने चाहिए, प्रकाश जैन नांदेड़ से। डॉक्टर साहब, ये हमारा कार्यक्रम व्हाट्सएप पे पूरे ऑल ओवर इंडिया सुना जा रहा है, तो ये कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ये महाराष्ट्र से आया है लेकिन हम मथुरा में बैठे।
0: मैं बिल्कुल उनको भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने जब कहा कि छोटे बच्चों को कितनी बार टीका लगना चाहिए, देखिए इसमें जो अमिताभ बच्चन जी का एक आता है, आपने सुना होगा कि 5 साल 7 बार।
2: जी जी,
0: तो 5 साल तक के बच्चों को 7 बार टीका लग जाना चाहिए। उसके पश्चात फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु पर 2 और जोड़ दीजिए, तो कुल 9 बार बच्चों को टीका लगता है। और अगर बच्ची फिर भविष्य में वो गर्भवती होती है, मतलब शादी के होती है और पश्चात में गर्भवती, तो उसे गर्भावस्था के दौरान टीके, तो छोटे बच्चों में हम 5 साल में 7 बार का टीका,
2: 5-7 आप याद रखिए,
0: 5 साल 7 बार
2: तक 7 टीके लगेंगे और 2 फिर जो है बाद में जो बूस्टर डोज रहती है। और इस तरह के जो चीजें अब डेवलप हो रही है, जैसे अभी ये HPV वाला आया कि 14 साल तक की जो बच्चियां हैं वो ले सकती हैं, तो वो फिर एडिशनल होता जाता है, चलता जाता है।
0: ये सर जो HPV वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, यही सेम वैक्सीन गार्डासिल 4 आप बाजार में जाएंगे तो 4-5 हजार की कॉस्ट में पड़ता है।
2: बताइए बताइए।
0: और ये सरकार के द्वारा

0: कराएगा, सेम वही वैक्सीन है गार्डासिल 4।
1: तो मतलब ये एक बड़ा कार्य लेकर के आई। तो ये जो जिसको हम कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारा धन है, चीजें सरकार मान के चल रही है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है, परिवार किसी भी परिवार में अगर कोई बीमारी आती है तो वो पूरा परिवार उसको भुगतता है, चाहे आर्थिक रूप से एक व्यक्ति तो शारीरिक रूप से उसका वो कर रहा है, लेकिन पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति, समय का खराब होना, मानसिक परेशानियां, तो ऐसी बीमारियां ना हो, और जिसमें कैंसर की तो बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल सर,
1: तो बहुत बड़ी सुरक्षा सरकार लेकर के आई।
0: बिल्कुल सर, इसमें जो है हमारे यहाँ जनपद मथुरा की बात करें तो हम लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 31,000 से अधिक बच्चियों को ये टीके से जो है आच्छादित करेंगे। 31,446 हमको बताया गया है, हमारी जो आबादी का 1% जो है इतनी उम्र की बच्चियां,
1: मतलब 14 साल की लगभग इतनी
0: बच्चियां हमारे जनपद में होंगी,
1: और सबको ही हमें लगाना है, ये हमें 100% टारगेट है। तो और हर साल जो बच्ची 14 साल की होती जाएगी
0: उसको
1: फिर तो इस तरह से एक तरह से सोसाइटी में हम सर्वाइकल कैंसर की इम्यूनिटी
0: डेवलप कर लेंगे, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी हमारी। और दूसरा इसमें यह है कि अगर किन्हीं बच्ची ने पूर्व में अगर टीका लिया हुआ है तो वो भी अपना यूएन पर रिकॉर्ड चढ़वा दें, उनको आवश्यकता नहीं है टीके की, लेकिन वो रिकॉर्ड भी उनका
1: रिकॉर्ड आ जाएगा
0: डिजिटल उसमें आ जाएगा।
1: जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं
0: उसमें जानकारी में आ जाएगा कितनी बच्चियां कवर हैं। और
1: कुछ और कहना चाहें चलते चलते जो है, कोई श्रोता उससे जुड़े पहले आप टीकाकरण के संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उसमें व्यक्तियों से क्या अपील करना चाहेंगे, श्रोताओं से आप क्या कर
0: सर? पहले सर आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी को अब बताने के लिए मौका दिया। मैं सभी श्रोताओं से हार्दिक अपील यही करूंगा, एक निवेदन कि ये जो टीका है ये जो जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए है, और जब वो बीमारी हो जाती है तो और ऐसी स्थिति में आ जाती है कि आप जो है उसको अस्पतालों में यहाँ और वहाँ लेकर के जा रहे हैं, फिर भी जो है उसमें बच्चे की जान जाने की जोखिम रहती है। उससे अच्छा है कि आप समय से जो टीका सारणी के अनुसार है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, आपके क्षेत्र की ANM अथवा वहाँ की आशा आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें, और संपर्क करने के पश्चात जो उनके टीके छूटे हुए हैं वो टीके अवश्य लगवाएं। और अगर जैसे पेंटा का टीका लगता है या DPT लगता है तो उसमें बुखार की संभावना रहती है, तो उसके लिए हम पैरासिटामोल सिरप इसीलिए डिस्पेंस करते हैं कि अगर अगले एक दिन दो दिन में बुखार या कुछ इस तरह का आ रहा है तो उसको दिक्कत ना हो।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: अगर पेंटा 1 लगवाया टीका हमने और हल्का बुखार आया तो फिर 4 हफ्ते बाद पेंटा 2 टीका लगना है, तो आप ऐसे इसे घबराए नहीं और टीके अपने समय से पूरे करवाएं।
1: जी जी, डॉक्टर साहब आपकी बात को शीतल यादव वृंदावन से उन्होंने सुना है और उस पर एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है कि 5 साल 7 बार की बात ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर कोई टीका लगने से छूट जाता है तो बाद में भी क्या लगवाया जा सकता है, उसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं होगा बाद में लगवाने का? ये
0: बिल्कुल, इसमें देखिए जो मैंने शुरू में ही बताया जो हमारा एनटैगी ग्रुप है और इसमें हमें जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अनुरूप हम उनको इसका पालन करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई टीके छूट गए हैं तो भी आप परेशान ना हो, आपके उसके बाद उसकी उम्र के सापेक्ष में जो टीके लगने चाहिए वो टीके उसको निःशुल्क आपके नज़दीकी चिकित्सा इकाई या आपके समाज में जो टीके का हमारा छाया VHSND सत्र होता है, हर बुधवार शनिवार को टीके लगते हैं, आप ही के क्षेत्र में लगते हैं और जहां पूरे जनपद में आप जहां भी निवास करते हैं वहां एक माइक्रो प्लान के अनुसार उस महीने में एक बार बुधवार या शनिवार को आपके यहां हमारा जो है ANM आशाएं वहां बैठती हैं, आंगनवाड़ी दीदी की मदद लेती हैं और उनको घर से बुलाकर एक नियत जगह पर टीके लगाती हैं। तो किसी प्रकार का कोई टीका छूट गया है तो वो टीका लग सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, मैं चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि समय तो थोड़ा सा कम रह रहा है उसमें, कि बीच में एक बड़े लोगों के लिए भी Hepatitis B और इनके भी कुछ टीके आए थे, क्या अभी भी है, लोगों को उससे सुरक्षा ले लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार आदमी लगता है अब तो मैं तो स्वस्थ हो गया, बड़ा हो गया, अब शायद मेरे को कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, विकसित होती रहती है, तो हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा चलते चलते बताना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, इसमें Hepatitis B जिसमें पीलिया से बचाव का है, लीवर में ये फ्यूचर में लीवर के कैंसर से बचाव भी करती है, ये भी राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में है उपलब्ध, ये बच्चों के लिए है। तो पैदाइश पर जो टीका लगता है, पहला टीका जो पैदाइश पर लगता है 24 घंटे के भीतर, वो Hepatitis B का ही टीका लगता है।
1: जी जी।
0: और बाद में उसको तीन टीके और मिल जाते हैं पेंटा वन के साथ, पेंटा के साथ में 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 16 सप्ताह, 14 सप्ताह की उम्र में।
1: जी जी।
0: तो लेकिन व्यस्क हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए

0: हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, हमारे अस्पताल में सभी को हमने लगवाए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी ये टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों के लिए उपलब्ध है।
1: जी जी, चलते चलते एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: राधे राधे।
1: राधे राधे भैया, नाम बता दीजिए।
2: मैं आनंदगंज से बोल रहा हूँ, मथुरा। मानिक चंद।
1: मानिक चंद आनंदगंज से
2: जी। मेरी 72 साल की उम्र है।
1: जी जी, बताइए।
2: अभी ऐसी कोई मतलब आगे कोई बीमारी का चांस हो सकती है क्या?
1: नहीं नहीं, हम तो टीकाकरण की बात कर रहे हैं। आपकी 68 साल उम्र आप बता रहे हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं ये बताइए।
2: ये जानना चाहता हूँ कि मैं मतलब 2-3 किलोमीटर रोज चलता हूँ पैदल।
1: हाँ, ये तो अच्छी बात है। 2-3 क्या 5 किलोमीटर चलिए।
2: तो थोड़ी सी मिर्ची खाने में परेशानी होती है।
1: अच्छा, खाने में या मिर्च खाने में, क्या क्या कह रहे हैं आप?
2: खाने में मतलब लाल मिर्च खाते हैं ना।
1: तो मत खाइए, हरी मिर्च खाइए, काली मिर्च खाइए, दक्षिणी मिर्च खाइए, क्या परेशानी?
0: आप कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं?
2: ये जानकारी चाहता हूँ, कोई बीमारी तो नहीं है ये?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये
0: अच्छा। आप ये बताइए, आप कहाँ निवास करते हैं?
2: राधे राधे।
0: राधे राधे,
1: ये आनंदगंज की बात कर रहे हैं।
0: आनंदगंज मतलब मथुरा में ही। आपको अगर फिर भी कोई संशय है तो आप जिला अस्पताल आकर के या नजदीकी शहरी जो PSC है, हमारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो आप, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैं। हमारी जो 10 PSC हैं वृंदावन कोसी कला के अलावा, 8 यहीं पर हैं। एक रूपम टॉकीज के सामने हैजा हॉस्पिटल के नाम से है, और बलदेवपुरी जो है जयगुरुदेव के पास में, BSA के पास में सुखदेव नगर, इस तरह से 10 PSC हैं। आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर से परीक्षण करा सकते हैं।
1: जी जी, वैसे भी 60+ में 50+ में तो एक नियमित जांच
0: होना चाहिए,
1: परिवार के लोग कराते हैं। तो आप आनंद लीजिए, जो है घूमते ही अच्छी बात है। चलते चलते एक गीत के साथ हम छोड़ जाते हैं लोगों को कि भाई ये जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर रोहितास तेवतिया साहब, आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, आपने अपने अनुभव की बात, जानकारी की बात, और जो टीकाकरण का एक नियमित रोस्टर है उसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। लेकिन ये हम सब के लिए और हम सब की जिम्मेदारी भी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको, और जो नए चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे 14 साल की बच्चियों के लिए एक वरदान के रूप में HPV वैक्सीन का जो ये कार्यक्रम जुड़ा है, इसका लाभ जरूर लें और अपनी बच्चियों को होने वाले सर्वाइकल कैंसर से जब वो पारिवारिक जीवन में जाएंगी बचाव का एक सुरक्षा कवच अवश्य जरूर उनको पहनाएं। डॉक्टर तेवतिया, आप आए जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण HPV टीकाकरण के संदर्भ में। वार्ताकार थे रोहित दास सिंह और आपसे बातचीत कर रहे थे OP सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: एक स्मूथ स्टार्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म बरसात में, और आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर और साथियों को। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों को भी आपने सुना फिल्म दिल में, और आइए सुनते हैं बब्बी लहरी, अनुराधा पौडवाल और साथियों को। फिल्म का नाम है थानेदार।

अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों के गाए फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

नमस्कार मित्रों, कुछ लोग चाय के बिना नहीं जागते, कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन शुरू ही नहीं होता जब तक उनका पसंदीदा गीत कानों में न घुल जाए। तो लीजिए आपकी यादों की पोटली, आपकी फरमाइश गीतों की ऐसी लिस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है, ऐसे ही प्यारे से गीतों को लेकर मैं आ गई हूँ आपकी अपनी।

यहाँ फोन आपका, फरमाइश आपकी और गीत भी आपकी पसंद का, तो मुस्कुराइए क्योंकि अब बजने वाला है वो गीत जिसे सुनकर शायद आप भी गुनगुना उठें।

0: और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई गीत दस्तक दे रहा है तो हमें फोन कीजिए, क्योंकि यहाँ फरमाइशें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पूरी भी की जाती हैं। तो चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पहली फरमाइश के साथ। हेलो आकाशवाणी।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: जी आपका नियमित श्रोता ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र
0: जी
1: चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा सिहोरा मथुरा से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं महेंद्र जी?
1: दीदी हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
0: बिल्कुल, यही कामना हमारी भी रहेगी और इसी कामना के साथ आज आपकी पसंद क्या रहेगी?
1: जी फिल्म का नाम है पैसे की गुड़िया।
0: जी
1: मरहूम मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत है, जिसके बोल हैं कोई फूल न खिलता ये कली भी न होती।

0: हाँ दीदी को नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
0: हमने पुकारा, दीदी चली आई, तो हम आज याद ही कर रहे थे दीदी आपको।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप याद करते हैं, हम चले आते हैं। आपकी याद करने की जो क्षमता है उसमें बड़ी ताकत है, इसका मतलब। हाँ,
0: वही वाली बात है, आप आई बाहर आई।
1: बस आप याद करते हैं तो हम आ जाते हैं।
0: तो आदरणीय दीदी रश्मि जी को मेरा प्यार और सत्प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार। और
0: दीदी दीदी आप कैसी है? आकाशवाणी टीम कैसी है?
1: जी सब बढ़िया, आनंद मंगल। और अपना परिचय भी दे दीजिए।
0: दीदी मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ, गांव उसपा से। दीदी
1: जी यादराम जी, और आपके गांव में सब बढ़िया मजे में?
0: हाँ दीदी खूब बढ़िया है, मजे हैं, गांव में भी खूब अच्छे हैं, और आपकी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप और हम मस्त रहें, खुश रहें, दीदी ऐसे ही
1: बिल्कुल
0: बने रहें।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही बने रहने के लिए हमारा हमेशा प्रसन्न रहना जरूरी है, और प्रसन्न रहने के लिए संगीत बहुत जरूरी है, और संगीत के लिए मुझे आपकी फरमाइश जाना बहुत
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: दीदी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी।
1: जी बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे।
0: ये लुटेरा फिल्म का किसी को पता ना चले बात का, ये है आज बात मुलाकात का। दीदी आज हमारी मुलाकात हो गई, हमने पुकारा आप आई
1: बस, तो फिर किसी को
0: गई।
1: पता नहीं चलने देना, किसी से कह मत देना कि हमारी आपकी मुलाकात हुई है, ठीक है? हाँ
0: दीदी
1: नहीं
0: राधे
1: बता,
0: राधे।
1: राधे राधे बताना नहीं, ठीक है?
0: अरे नहीं नहीं दीदी, अभी
1: हाँ
0: सब सुन, अब आप सुनवाएंगे तो सब सुनेंगे दीदी।

0: हेलो आकाशवाणी
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र दीदी।
0: स्वागत है कार्यक्रम में राजू जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी हेलो आकाशवाणी टीम और हमारी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी दीदी कैसी हैं?
0: बिल्कुल, आपको मेरी आवाज से ही पता चल जाएगा कि मैं कितनी खुश हूँ जब मेरे श्रोताओं से मेरी बातें होनी शुरू हो जाती है इस कार्यक्रम के दौरान।
1: तो पहले से ही जैसे ही आपकी आवाज सुनते हैं वैसे ही हमें पता चल जाता है कि आज प्रेजेंटेशन किसका है हेलो आकाशवाणी में। तो बस कार्यक्रम में फिर तो कहने ही क्या, चार चांद लगी जाते हैं।
0: जी जी जी जी, और उसके साथ में जब देखिए, दाल का मजा तभी आता है जब उसमें अच्छा सा तड़का हो, है ना? तो मतलब मेरे लिए तो आप ऐसा समझिए, मैं उबली हुई दाल हूँ, और जहाँ आप लोगों के कॉल्स आते हैं तो उसमें तड़का लग जाता है और बस दाल एकदम मस्त वाली बन जाती
1: नहीं,
0: है।
1: जी नहीं जी नहीं जी, आप तो एक कार्यक्रम आपकी जो प्रस्तुति है वो वास्तव में लाजवाब होती है। कोई कुछ भी कहे, प्रोग्राम में जब भी आप आती हैं तो बस प्रोग्राम का एक मजा जो है वो कुछ हटके और अलग ही हो जाता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, और इसी के साथ आपकी पसंद जानना चाहूंगी।
1: आज आप हमें सुनवाइए दीदी, फिल्म का नाम है कल की आवाज, इसमें गाना है तुम्हारी नजरों में हमने देखा।
0: ठीक है, अजब सी चाहत छलक रही है।
1: छलक रही क्योंकि आपके प्रोग्राम में जो अजब सी जो सुनने की चाहत छलकती है तो कोई भी सुनने को बेताब है।
0: धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और ये सम्मान देने के लिए। सुनिए पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू दीदी, नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: आपका श्रोता जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा।
0: कैसे हैं अशोक जी?
1: मैं ठीक हूँ, बस बातें आपसे हो रही थी और अच्छे हो गए। मौसम भी सुहाना है।
0: क्या बात है, मौसम सुहाना है पर दिल का क्या अफसाना।

0: मैम।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
0: आपका श्रोता जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा।
1: कैसे हैं अशोक जी?
0: मैं ठीक हूँ, बस बातें आपसे हो रही थी और अच्छे हो गए। मौसम भी सुहाना है।
1: क्या बात है, मौसम सुहाना है पर दिल का क्या अफसाना है, ये भी बता दीजिए।
0: दिल का अफसाना यही है, गरम गरम पकौड़े चाय वगैरह चल रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ताजा खाना खाओ, वृक्ष लगाओ मौसम में, इस मौसम में।
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने जबरदस्त कही। खाना तो चलता ही रहेगा लेकिन वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष सालों साल चलते रहेंगे। हम रहें ना रहें लेकिन ये वृक्ष अगर हमने थोड़ी सी देखभाल कर ली तो आगे तक लोग इस वृक्षों की छाया से, इनके फल फूलों से लाभान्वित होते रहेंगे।
0: बार बार जी मैडम, गाना सुनवा दीजिए।
1: बताइए।
0: फिल्म दो झूठ छतरी न खोल, उड़ जाएगी बातें।

0: दोना
1: आएगा वो दिन बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, नमस्कार। कौन रहे बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं ब्रिज रेडियो श्रोता सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान।
0: जी स्वागत है सांवरिया जी कार्यक्रम में। और कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल धन्यवाद रश्मि जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया। अब आप पहले बताइए कलेऊ में आज क्या लिया?
1: नहीं चाय पी है सिर्फ, अभी नहीं किया है।
0: अच्छा, तो अभी वहाँ का मौसम कैसा है आपके यहाँ राजस्थान में?
1: बहुत गर्मी का है, बरसात नहीं हुई है।
0: जी तो बरसात अभी नहीं हुई है, बरसात की प्रतीक्षा है, और आपको प्रतीक्षा बरसात की है, हमें भी है, लेकिन फिलहाल प्रतीक्षा हमें आपकी पसंद के गाने की है। तो बताइए बताइए क्या
1: सुनवाइए? क्या था सावन फिल्म से तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
0: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: अरे रश्मि दीदी जान बोल रही हैं।
0: हाँ जी,
2: अरे तब तो मान के चलिए कि अब बहार आ जाएगी, मेरे घर में बाढ़ आ जाएगी।
0: अब बाढ़ की बात ना कीजिए अम्मा, इस समय वैसे ही मानसून आने वाला है, संभाल कर चलिएगा।
2: अरे दीदी जान, ये मान के चलिए कि मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, और कितना इंतजार करता हूँ, और आप जैसे अनाउंसर विविध भारती मुंबई की ममता सिंह बता दिया हूँ, भोपाल की सुनीता सिंह और दीप्ति ज्योति लखनऊ की, और उससे बढ़कर आप।
0: क्या बात है, इस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: कहते हैं उजाले बहुत से देखे,
0: हाँ।
2: उजाले बहुत से देखे पर चांदनी सी कहाँ, और पक्षी बहुत से देखे पर मोरनी से कहाँ, और दीदियाँ बहुत सी देखी पर रश्मि दीदी जान जैसी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तारीफ के लिए, और अभी आपकी पसंद भी जानना चाहूंगी।
2: आप दीदी जान थोड़ी सी बात और कर लूं, क्योंकि गाना भले थोड़ा बजाइएगा, एक तो लास्ट में लगा है बड़े इंतजार के बाद, आपकी भाभी जान तो है नहीं, और मैं बता दूं, हाँ? कि मुझे, मैं मथुरा का दीवाना
0: जी,
2: ग्राम कल्पा जिला सतना से, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से, चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना हिंदुस्तानी कलाकार युग।
0: जी जी चलिए, अभी आप गाना बता दीजिए।
2: हाँ गाना बता दूं दीदी जान, और एक लाइन और बोल दूं, बस हो गया। अजीज होता है ना हबीब होता है, दूर होता है ना करीब होता है, अमीर होता है ना गरीब होता है, और सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो वक्त में साथ दे दे।
0: जी
2: जान वही सबसे अच्छा दोस्त होता है, और हमारी सबसे जबरदस्त दोस्त हैं आप आकाशवाणी से, क्योंकि हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, और हमें जो है तो मार्गदर्शन मिलता है, वो आप जब कार्यक्रम पेश करती हैं तो समझो बाहर आ जाती।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अब आपकी पसंद बता दीजिए।
2: गाना तो अब एक बहाना होता है, पर गाना बताना ही पड़ेगा, और हाँ। गाने तमाम सुनते रहते, प्यासा सावन का गाना है आज दीदी जान सुनना चाहता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी रश्मि शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, सदका भी दे दिया नज़र भी उतार दी, सदका भी दे दिया नज़र भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन की मुझ पे बार दी। मैंने कल रात यूं ही कहा, मैंने कल रात यूं ही कहा कि तबीयत खराब है, माँ ने सारी रात दुआओं में गुजार दी। जी श्रोताओं, माँ ऐसी ही होती है। बच्चों को खुद से अगर ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो माँ ही होती है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि माँ के लिए बच्चा सब कुछ होता है।

श्रोताओं, आज आधुनिक युग के बच्चे कुछ ज्यादा ही जिद्दी और चिड़चिड़े हो रहे हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, मोबाइल फोन, एकल परिवार या माँ का बाहर काम करना। अगर हम थोड़ी सी सावधानी से बच्चों की परवरिश करें तो बच्चे सुधरेंगे भी और हमें समझेंगे भी, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं।

श्रोताओं, जब हम कहीं बच्चे के साथ बाहर जाते हैं तो बच्चे पब्लिक प्लेस पर कई बार हमारी बात नहीं मानते, जिद करते हैं या गलत व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे में हमें पैनिक नहीं, पॉज करना चाहिए। सबसे पहले गहरी सांस लें और शांत रहें। आपका शांत रहना ही बच्चे को भी जल्दी ही शांत होने में मदद करता है। पब्लिक में डांटने या शर्मिंदा करने से बच्चा और ज़्यादा रो सकता है, गुस्सा कर सकता है या विरोध भी कर सकता है। कई बार मिसबिहेवियर के पीछे भूख, थकान, बोरियत या ज़्यादा शोर का कारण भी होता है। सबसे पहले बच्चे का कारण जान लें और उस कारण का निदान करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे जल्दी ही समझ जाते हैं अगर प्यार से समझाया जाए तो।

श्रोताओं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अगर उन्हें बात खेल खेल में समझाई जाए और प्यार से समझाई जाए तो वो मानते हैं। शांत आवाज में कहें, मैं समझाता हूँ या समझाती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मारना, चिल्लाना, ये चीज़ें फेंकना ठीक नहीं है। जब बच्चा पूरी तरह शांत हो जाए तब उसे समझाएं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या करना है या क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से बच्चे को समझाएंगे तो बच्चों तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी और वो हमारी हर बात को समझेंगे और हर गम से दूर रहने में मदद करेंगे।

श्रोताओ, ठीक ही बात है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बच्चे को अगर प्यार से समझाया जाए, बिना गुस्सा किए बच्चों को सुधारने का तरीका यही है कि आदेश नहीं विकल्प दें। बच्चे को ये ना कहें कि यह करो, इसकी जगह बच्चे को ये बोलें कि पहले होमवर्क या पहले खेल, उससे ही पूछिए तो वो उसका जवाब खुद ही देगा और अपनी बात पर अमल भी रहेगा, जिससे इससे क्या होगा, बच्चा खेलेगा भी और होमवर्क भी कंप्लीट करेगा। गलती के बाद दूरी नहीं साथ दें। गलती पर चुप हो जाना बच्चे को अकेला महसूस कराता है, जबकि बच्चे को प्यार से समझाकर अपने साथ बिठाकर वही बात अच्छे से समझाई जाए तो उसके समझ में अच्छे से आ जाती है। बच्चे की उम्र के अनुसार समझाएं। जो बात 5 साल का बच्चा नहीं समझेगा वो 10 साल का बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो बच्चे की उम्र के हिसाब से सोचें और उसको समझाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बच्चे को प्यार से समझाएं और वो समझे नहीं, क्योंकि बच्चे तो बस नन्हे मुन्ने राही होते हैं।

0: दूंगा कदम।
1: दहने बाएं दहने बाएं थम,
0: नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग।
2: श्रोताओं, बच्चों को सुधारने के लिए नियम कम लेकिन स्पष्ट रखें। बहुत ज़्यादा नियम बच्चे को चिड़चिड़ा बना देते हैं। सुधार अकेले में करें। सबके सामने बच्चे को टोकना बहुत बुरा लगता है, बच्चा अंदर से टूट जाता है। सज़ा नहीं, समाधान खोजें। पूछें अब इसे ठीक कैसे करें अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है तो। हर दिन एक प्यारा भरा वाक्य बच्चे को ज़रूर कहें। प्यार के शब्द बच्चों को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में विशेष कार्यक्रम, जिसका शीर्षक था परवरिश। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

जटायु रावण को हरा नहीं सके, लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी विजय है। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर कार्यक्रम गीत बात और SMS में करती हूँ सभी श्रोताओं का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। तो सबसे पहले कीजिए स्वीकार मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, समय को ना जाया करते हुए कार्यक्रम में पढ़ देते हैं 11:45 का पहला संदेश। हमें मिला है फतेमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदपुर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल और जैनेब का संदेश मिला। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं, दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति गमरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति देव कुमार, आर्य कुमार। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से हमें संदेश लिखा है नारायण इंगले, सोपान और आशीष ने। आप हैं कालानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिहा, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता का संदेश मिला। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक, श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षादा, वैष्णोदेवी, पूनम, युवराज महाराष्ट्र से, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्ना माला सुरलकर, जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, रगनी, रिया, दिव्यांशी, आराधना, चंद्रेश, सुनील पाठक हमें संदेश लिख रहे हैं बुंदेलखंड यूपी से। सुनील पाठक, कमल, दीपक, गववास भाई, सुच्चा, विनोदपुरी, जयपाल, अनारकली बाजार, जगराओ, पंजाब से। अगले संदेश करता है उत्तम कुमार, भगत, श्वेता, कीसु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम, झारखंड पाकुड़ से, बौड़ा काक्षी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश मिला। कोटवा नारायणपुर, बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। आप हैं कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले, पुणे से हमें संदेश लिख भेजा है अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा ने। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान उस्मान। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा।

अगले संदेश करता है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश निवृत्ति संजय, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी और गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेज पचपन से। आवाज़ है गीता दत्त की, शब्द रचना मजरू की है और इस गीत को धुन से संवारा है ओपी नैयर ने।

इस गीत को सुनना चाहा था नादेड़ से प्रकाश जैन ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी फुटानी चौक नरहन इस्टेट से ललन मिश्रा नूतन, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित ने। इसी गीत को सुनना चाहा था शाहू नगर यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, रेशमी, बेबी प्रियांशी ने। कार्यक्रम में अगला संदेश लिख भेजा है काटा रोड वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल, सुरोशे, सुषमा, परिधि और मायरा। आप हैं हर्षा रामिकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रोमकर, रुचिकर, अमरावती महाराष्ट्र से। मोहम्मद यासीन अनजान, नवाज, हसन बाबू, मिकप्रा, बेबी चाहत, गिरिडीह झारखंड से। कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, फनेश, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र।

और हेयांश कुमार चंदन। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा। आप हैं ग्राम बघेरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से श्रद्धा सुमन। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी, पोता मास्टर अलकबीर, छत्तीसगढ़ से। आदर्श नगर मलोट, पंजाब से हमें संदेश लिखा है राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, साइना, सौरभ और निवान ने। सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता, कृष्णा कॉलोनी, हांसी से। सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू, तरुण, श्रीनिका, श्रीजा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना भोंगिर से हमें संदेश लिख भेजा है मोहम्मद बुहारुद्दीन, फज्जान अल्लाह, फरान अल्लाह, आजमीन गुड़िया। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल कुणाल का संदेश मिला। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सोनू, निप्पी साहनी और अफजल मलिक। अगले संदेश करता है शेरवानी स्कूल गंजी डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना आलिया, सैयद मसरूर, साइना, अक्षा, नाजिया, इब्राहिम, सद्दाव, अदीप हमें लिख रहे हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, माला मिश्रा, साक्षी, रुद्र रानी, नीलम, रश्मि, कुसुम, रूपा, पीपी कॉलोनी लखनऊ से। मरेवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षक, जयश्री का संदेश मिला। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, मीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ू कोयल, नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का का संदेश मिला। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, समा, साइमा, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेशा, शुभम और अक्षय। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म बेताब से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और धुन से संवारा है इस गीत को आरडी बर्मन ने।

इस गीत को सुनना चाहा था जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, वलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश और प्रमिला ने। कार्यक्रम में अगला संदेश इसी गीत की फरमाइश के साथ भेजा था निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई।

शेख चांद फारूक फूल वाले, सैयद खलील मुवीन भाई एमडी यासीन ने। इसी गीत को सुनना चाहा था लक्ष्मण राय लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश, प्रतीक्षा स्वप्निल, लक्षिता ने महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सोनू कुमार, अर्चना,

सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश, आकाश, मनीष, रिहान, पायल और अकीता। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र, नेपानगर एमपी से। अगले संदेश करता है अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल। मोहम्मद जकीर मंसूरी, कमरून निशा सवस्तिया, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी हमें संदेश लिख भेज रही हैं मुंगीसापुर से। अगले संदेश करता है दत्रेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र और नोखे लाल। लातूर से प्रकाश जैन, संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन का संदेश मिला। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्मीन कौशर, डॉक्टर इसिता सहानी, झुमरी तलैया से डॉक्टर सोनम, बरकाकाना से नाजनी तवसुम अफजल इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम का संदेश। तेलंगाना से हमें लिख रहे हैं काजल, खाजा रिजवुद्दीन, खाजा फजीउद्दीन, तवसुम और जुवेरिया। जिला तरन तारण पंजाब से गुदर्शन लाल, चलोत्रा सुनीता, शम्मी रजनी, आकाशदीप, अनद और पोत्रा का संदेश मिला। अगले संदेश करता है जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, शेख मूसा भाई, भाई राजकुमार, बोड़ाना, सुदामा नगर, खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। एक और श्रोता सीताराम कांगड़ा, बबीता निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगेश इंगले, संध्या स्वराज विराज इंगले, ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जाधव, अनसुईया और पवन राजे का संदेश प्राप्त हुआ। शाहजी नगर तेगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनन्या सुकन्या सविता भाकरे, डॉक्टर रमेश कुमार जिजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू, गुड्डू मलोट से, स्वप्निल धाड़े, नीनाजी वकील वाल्मीकि, शत्रुघ्न धाड़े महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टंकलू, बीबी कुलथे का संदेश मिला। हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय रुद्रा रामेकर, रुचिकार महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़े हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री और प्रतीक कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का संदेश मिला। अगले संदेश करता है बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिट्टू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता पप्पू महक, सुनीता आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव बटी और पूरा खुशदिल परिवार सामना शहर पंजाब से। संदीप मकर, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल पिंगावाला चौक से हमें लिख रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आवाज है मुकेश की। फिल्म का नाम है जिंदगी और तूफान।

इस गीत को सुनना चाहा है अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज सलमा और समस्त हाशमी परिवार ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी है मंचला रेडियो लिस्नर क्लब अकोला से के शरद पाचपोर शोभा पाचपोर ने।

इस गीत को सुनना चाह रहे थे सुनीता शिंदे, यसराज, प्रशांत ऋषि, कृष्णा घोड़के, रोहित ताज, चौक पंडरपुर से। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा वानू, बाबा शेख, सिमर करिश्मा ने। और इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य बबुरी बाजार चंदौली से विजय सरोज, रामनगर कदमा से मुराहू देवंती, चकिया बाजार से सुंदर और सुमन।

राजनगर, मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता रविराज, गौरव छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार, सजीत, सर्वजीत और सुधांशु कुमार। जिला मुरादाबाद से हमें इसी गीत की फरमाइश लिख भेज रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर।

बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, लेकिन चलते चलते दे देते हैं आपको एक प्यारा सा संदेश। कड़वे वचन और मीठे झूठ दोनों ही रिश्तों की परीक्षा लेते हैं। सत्य धीरे धीरे जीतता है और अहंकार इंसान को धीरे धीरे खोखला करता है। जहां विश्वास मिले

उसे निभाओ, जहाँ स्वार्थ मिले उसे पहचानो और जहाँ दिल दुखे वहाँ दूरी बना लो। इसी के साथ कार्यक्रम सबको संपन्न करने की मुझे यानी दुर्गेश भास्कर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं बांके बिहारी शर्मा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज के कलाकार हैं बांके बिहारी शर्मा, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत बांके बिहारी शर्मा के ही स्वर में।

डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।

0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: ब्रजलोक गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के कलाकार हैं बांके बिहारी शर्मा, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रजलोकी।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज के कलाकार हैं बांके बिहारी शर्मा, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम ब्रज लोक गीत बांके बिहारी शर्मा के ही स्वर में।

इसी ब्रजलोक गीत के साथ आज का ब्रजलोक गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज के कलाकार थे बांके बिहारी शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा

0: वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी लेते हैं एक व्यावसायिक अंतराल।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बरसात के मौसम में महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल। इसके अलावा चर्चा होगी स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ परिवार में महिलाओं की भागीदारी विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंटवार्ता, गर्मियों का मेकअप और जरूरी सावधानियां, बजट और बचत में आर्थिक स्वाभिमान। वार्ताकार होंगी अमिता शर्मा और इनसे बातचीत करेंगी सीमा सिंह। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी अंतिम गौतम। फिल्म संगीत का समय रहेगा अपराह्न 1:45 पर। एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा अपराह्न 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। इसके अलावा आज की बात होगी नशे से दूर रहें। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी किस्से एक फनकार का सफर। हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। आज का ये फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी होगा खरीफ फसलों में उर्वरकों का उचित प्रयोग पर आधारित। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत। संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा जिसका शीर्षक होगा लालच बुरी बला है। कथाकार होंगे नंदकिशोर वर्मा। समय रहेगा संध्या 7:05 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा रात्रि 8:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम न्यूज एट 9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने सुना जा सकेगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम मनी टॉक का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर। और कार्यक्रम मंथन आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण का समय रहेगा रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन, राग होगा चंद्रकौंस। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी मिलते हैं।

0: एक ही छोटे से अंतराल के बाद।
1: ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनितालोक।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट।

0: इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम आ चुका है और ये बरसात का जो मौसम होता है हम सभी को पसंद होता है। बहनों, वर्षा ऋतु प्रकृति का सबसे खुशनुमा और जीवंत मौसम होता है जो चिलचिलाती गर्मी से हम सभी को राहत दिलाता है। वर्षा ऋतु पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ पंक्तियाँ। काले काले बादल आए, काले काले बादल आए, गगन में अपनी डेरे जमाए, गगन में अपनी डेरे जमाए, ठंडी ठंडी हवा चली जब, ठंडी ठंडी हवा चली जब, मन मयूर खुशी से नाचे, रिमझिम पानी बरसे, धरती का हर कोना तरसे, सूखे खेत हरे हो जाते, किसान खुशी से गीत है गाते, गर्मी की अब हुई विदाई, वर्षा ऋतु है खुशियां लाई। जी हाँ बहनों, वर्षा ऋतु से हम सभी के मन प्रसन्न हो जाते हैं, चेहरे खुल जाते हैं। जी हाँ बहनों, गर्मियों का जो मौसम होता है इसके आगमन से हम सभी को खुशी तो होती है, परंतु इस बरसात के मौसम में कुछ परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि हर चीज के, हर मौसम के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार बरसात के मौसम के भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि इस मौसम में नमी होती है और नमी के कारण बहुत सारी परेशानियां, बहुत से सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस मौसम में धूप कम होने के कारण जो हमारे कपड़े हैं वो आसानी से नहीं सूख पाते हैं, और इस नमी वाले कपड़ों का यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो इसकी वजह से हमारी त्वचा में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने पानी की जो चीज़ें हैं वह भी हम फ्रिज की रखी यदि खा लें तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो बहनों, इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, खास करके महिलाओं की। बहनों, बरसात के मौसम में अक्सर जो बहनें होती हैं कई बार कपड़े न सूखने के कारण नमी के कपड़े पहन लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, खास करके इंटरनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी महसूस होती है, जैसे कि खुजली है, दाद है, अन्य कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस मौसम में ज़रूरत है कि हम जहाँ तक हो सके सूखे कपड़ों का ही उपयोग करें, गीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहनें, जितना हो सके उन कपड़ों को बिल्कुल सुखा कर तभी उनका उपयोग करें। बहनों, कई बार हम बाहर से आते हैं तो जो हमारे जूते चप्पल हैं वो भी गीले हो जाते हैं, और बहुत देर तक गीले जूते चप्पल पहनने के कारण फंगल इन्फेक्शन, दाद, खुजली, ये सभी आम बीमारियां हमारे हाथ पैरों में भी होने की संभावना होती है। साथ ही साथ खान पान का भी इस मौसम में हमें अपना विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने इस

समय स्ट्रीट फूड अर्थात बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। बाहर की कोई भी चीज़ आप ना खाएं, जैसे कि चाट पकौड़े, बाहर के कटे फलों का सेवन भी ना करें, क्योंकि बाहर की ये कटी हुई चीज़ें बहुत देर तक रखी रहती हैं और इसमें मक्खी मच्छर के कारण बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रभाव पड़ सकता है। मनु, मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु हम क्या कर सकते हैं, अर्थात इसके लिए पानी जमा ना होने दें कहीं भी, जैसे हमारा फ्रिज है या अन्य कोई टंकी है या कोई घड़ा वगैरह है, खुली जगह में कहीं पानी भरा हुआ है तो उस पानी को ना भरने दें, क्योंकि ऐसे पानी जहाँ भी भरा होगा उसमें मच्छर पनप जाते हैं और मच्छरों के कारण आपको पता है कि बहुत सारी बीमारी हमें रोग ग्रसित हो सकते हैं। कई बार लगातार बारिश के कारण धूप ना निकलने से भी हमारा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, और ऐसे में ज़रूरत रहती है कि हम अपने मन को खुश रखें, प्रफुल्लित रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हल्का हम व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मन है वह एकाग्र होगा, खुश होगा। इस तरह थोड़ी सी सावधानियों के साथ हम इस बरसात के इस सुहाने मौसम का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं।

0: जी हाँ बहनों, ये बरसात का मौसम वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जिस दिन भी धूप निकलती है बारिश के बाद, तो हम सभी तिलमिला उठते हैं। अर्थात जो गर्मी होती है वो हम सभी सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस गर्मी में एक नमी होती है और हम सभी को ज़रूरत होती है कि इस गर्मी के मौसम से कैसे बचें। और बहनों, ऐसे मौसम में अक्सर यदि हमें कहीं किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी समारोह में जाना हो, इस समय शादियों का मौसम भी चल ही रहा है, तो महिलाओं का खास तौर पे ज़रूरत होती है कि हम मेकअप करके जाएं। और मेकअप करना हो और गर्मी का मौसम हो, तो मेकअप तो सारा बह ही जाना है पसीने के कारण। इसके लिए हम क्या-क्या सावधानी रख सकते हैं, किस तरीके से हम मेकअप करें, इसकी विशेष जानकारी के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ये भेंट वार्ता, गर्मियों का मेकअप और जरूरी सावधानियां। तो बहनों, इसमें जानकारी देंगी अमिता शर्मा और उनसे बातचीत करेंगी सीमा सिंह।
1: बहनों, हम हर बार अपने स्टूडियो में ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सके हमारे आईना क्रम में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हैं अमिता जी, अमिता शर्मा जी, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, और वो हमें गर्मियों में कैसे हम अपने मेकअप को सुरक्षित रखें, वाटर प्रूफ बनाए रखें, इसके बारे में जानकारी देंगी। तो अमिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार बहनों।
1: अच्छा, हम महिलाओं को जैसा कि बहुत सुंदर दिखने का हमेशा ही एक चस्का सा लगा रहता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि हमारे इन सारे चस्के पे पानी का पानी पड़ जाता है, और क्या होता है कि हम मेकअप करके घर से बाहर निकलते हैं और तब तक पसीने से सारा चेहरे का रौनक और उसकी ताजगी सारी की सारी बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले तो अमिता जी, हमें ये बताएं कि हम अपनी स्किन को, जैसे कि हमारे पसीने आते रहते हैं, उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वाटर प्रूफ कैसे बनाएं।
2: हाँ देखिए बहनों, ये सबसे पहले हमें अपनी स्किन को वाटर प्रूफ बनाना है। ज़्यादातर महिलाएं क्या सोचती हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं उससे हमारी स्किन वाटर प्रूफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने जो चेहरे की नमी को कंट्रोल में करना पड़ता है, जिससे हमारी स्किन अच्छी ग्लो दिखे और जब भी हम मेकअप लगाएं तो वो मेकअप अधिक देर तक टिका रहे। तो पहले हमें अपनी स्किन को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं सिर्फ उसी को लगा के हम अपनी स्किन को वाटर प्रूफ बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे ऐसा है, जब हम लोग मेकअप करना शुरू करते हैं तो उस ये

0: जान लें कि हमें पार्टी के लिए करना है, मैरिज के लिए करना है, डे में करना है, नाइट में करना है, तो जैसे हम कपड़ों का चुनाव करते हैं उसी के अनुसार हमें मेकअप करने से पहले भी अपनी स्किन को तैयार करना पड़ता
1: यानी
0: है,
1: समय के मुताबिक।
0: हाँ जी, समय के मुताबिक। तो उसके लिए जैसे अब हमें पता है कि जैसे इन दिनों तो नमी है ही है,
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादातर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको सर्दियों में भी ये शिकायत रहती है और 12 महीने रहती है, तो उनके लिए खास तौर से मेरा कहना है कि वो पहले अपने चेहरे को या शरीर में ज्यादा जिसको पसीना आता है उसको वाटरप्रूफ करें। उसका जरिया यह है कि जब भी हम चेहरे पर मेकअप लगाते हैं उससे पहले हम टोनर का यूज करें और अच्छी तरह यूज करें, जैसे ठंडा पानी लें हल्का सा, उसमें कुछ बूंदे टोनर या एस्ट्रोजन लोशन, दो तरीके के लोशन आते हैं जिसमें कि टोनर बहुत सॉफ्ट रहता है, तो थोड़ी सी कुछ बूंदे टोनर की इस पर डाल के पानी में उससे चेहरे को धोएं। अगर उन कई लोगों को ज्यादा पसीना आता है तो उनको छोटे छोटे कॉटन के ऐसे बंद बना के उसमें उस को टोनर को लेके हल्का हल्का दबा के चेहरे को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। तो ये टोनर हमारे फेस के लिए खास काम करता है पसीने को रोकने के लिए,
1: मतलब अपने चेहरे को वाटरप्रूफ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा अमिता जी, अभी आपने टोनर की बात करी, तो मान लीजिए अगर हम ये चाहें कि पूरी तरह नैसर्गिक सुंदरता जो है वो हमारे चेहरे पे दिखे, तो हम प्राकृतिक चीजों को ही क्यों ना लगाएं, तो टोनर कुछ ऐसे बताइए जो प्राकृतिक हो और जिन्हें हम घर पे आसानी से बना सकें।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें सबसे पहला जो प्राकृतिक चीज में आता है हमारा आता है गुलाब जल।
1: जी जी जी,
0: जो सब मतलब सभी को पता है, बहुत इजी से सभी के घरों में पाया जाता है। अगर गुलाब जल भी हम नहीं ले पा रहे हैं तो फ्रेश गुलाब की जो पत्तियां हैं उनको आप पानी में रात भर रख दीजिए और उनको सुबह निकाल कर उससे भी आप चेहरा धो सकती हैं, या नहाते वक्त जैसे कुछ अर्क होते हैं पानी से आप नहा रहे हैं और पूरी बॉडी में लगता है और फेस पे काफी पसीना है, तो उसमें हम गुलाब जल डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, नींबू 2-3 नींबू हम अपनी बाल्टी में जैसे निचोड़ के काट के डाल लें तो एक तो दुर्गंध जो है वो दूर होती है और एक स्किन पे ग्लो भी रहता और पसीना भी कम रहता है। पुदीने का अर्क, जैसे हम पुदीने को रायते में खाते हैं, रायते में डाल के या किसी भी चीज में डाल के, सिर्फ पुदीने को हल्का सा सुखा के या पीस के उसका अर्क निकाल लो, वो भी हल्का सा 1-2 बूंद ड्रॉप आप डालते हो और उससे नहाते हो या फेस पे उसे यूज करते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमारी किचन में आसानी से हमें
1: उपलब्ध हैं।
0: हाँ, उपलब्ध हैं।
1: जी। अच्छा अमिता जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअली जब भी पुदीना का हम नाम सुनते हैं तो चटनी की बात ही याद आती है और मुंह में पानी भर ही जाता है। चला कि हम पुदीने को 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं, खाने में भी और लगाने में भी, और दोनों ही तरीके से वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आजकल मतलब गर्मियों में जो है वो सनबर्न की बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों का चेहरे में बाहर निकलना ही होता है, घर पे बैठ के काम करना पॉसिबल ही नहीं है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा झुलस जाता है, उस स्थिति में हम क्या करें?
0: देखिए अभी मैंने ये जो चीजें बताई ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, मेन पानी की कमी से।
1: जी जी जी,
0: और पसीना, पुराने लोग या डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि पसीना आना यानी बाहर शरीर से बाहर टॉक्सिन का निकलना होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना निकलता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, ना तो हम कहीं आने जाने लायक रहते हैं, बस गर्मी गर्मी गर्मी लगती रहती है। तो मैंने जो अभी आपको ऊपर ये सब टॉपिक बताए हैं तो आप इनका धीरे धीरे यूज करो तो धीरे धीरे ही उसका लाभ मिलता है। दूसरा, पानी की मात्रा को भरपूर हमको लेना चाहिए, चाहे हाँ उसका जरिया हमारे पास कुछ भी रहे, नारियल पानी लीजिए, फल से लीजिए, शिकंजी लीजिए, दही की लस्सी लीजिए, संतरा है, नींबू है, इन सब चीजों का जब हम भरपूर मात्रा में यूज लेते हैं तो पानी की मात्रा जब हमारे शरीर में पूरी रहती है तो स्किन धीरे धीरे हमारी वाटरप्रूफ होती है। और दूसरा, जैसे कुछ पैक होते हैं जैसे दही है, उसमें हम हल्का सा पुदीना मिला के और हल्की सी मुल्तानी मिट्टी लगा के अपने फेस पे लगा लें, जिससे कि स्किन जो मेकअप करने जा रहे हैं तो उससे पहले वो तैयार हो जाए।
1: अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपना मेकअप कराने के लिए या खुद ही मेकअप करने के लिए आगे बढ़ते हैं गर्मियों के दिनों में, तो चेहरा जो हमारा एक्चुअली से जल रहा होता है, इतनी ज्यादा गर्मी उसमें से बाहर निकल रही होती है, तो फिर क्या होता है, हम कुछ भी लगाते हैं वो तुरंत से फैल जाता है।

0: तो उसके लिए क्या किया जाए, चेहरे को कूल कैसे रखा जाए?
1: देखिए, हेलो, जब भी हम जैसे मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ये देख लें कि हमें किसी तरह का तनाव तो नहीं है। जब भी कभी हमें तनाव हो रहा हो तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि हम मेकअप करें।
0: जी जी जी।
1: पहले हमें सबसे पहले अपने आप को कूल रखना होता है,
0: यानी हम खुश रहें और तब मेकअप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जब हम खुश रहते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कूल है, तभी हमारा मेकअप हमारे फेस पे अच्छा लगता है। दूसरा, एक स्थान देखना चाहिए कि कहीं भी ऐसा नहीं कि हम मेकअप कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है या बहुत ज्यादा हीट है और हमें मेकअप करना ही करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ये देख लें कि थोड़ी ठंडक हो जहाँ पे हम मेकअप कर रहे हैं, या थोड़ा सा लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब मेकअप पे भागीदार होते हैं जब भी हम मेकअप करते हैं। दूसरा, लड़कियां जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाती हैं,
0: जी जी,
1: बहुत सारे प्रोडक्ट पे वाटरप्रूफ लिखा होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो वाटरप्रूफ है। पहले अच्छे से उसे देख लें, चेक कर लें कि वो वाटरप्रूफ है या नहीं। अच्छा, जब भी जैसे हमने मेकअप अप्लाई किया तो कपड़ों के अनुसार और सीजन के अनुसार हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए किस तरीके का प्रोडक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े हमारे बहुत कूल होते हैं और मेकअप के प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी के या हाई केमिकल्स के होते हैं जो हमारी स्किन को मैच ही नहीं करते,
0: लाइट
1: बिल्कुल नुकसान करते हैं। और जैसे अब गर्मियां चल रही हैं तो हमें एकदम बिल्कुल जैसे पाउडर बेस में सारे प्रोडक्ट फेस पे लगाने चाहिए और उनका कलर भी बहुत लाइट रखना चाहिए, चाहे वो काजल हो या फेस का बेस हो या आई शेड्स हो या लिप कलर हो, जो इस तरीके के जो भी जिससे हमको लगता है कि हम मेकअप कर रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत लाइट होनी चाहिए।
0: अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे चेहरे की मेकअप की। क्या होता है कभी कभी कि कपड़े कुछ और होते हैं, मेकअप कुछ और पहन रहा होता है, तो ये दोनों का जो मिसमैच होता है उसको कैसे दूर किया जाए? मतलब हमें अपने मेकअप के साथ साथ कपड़ों का कैसा चुनाव हो?
1: देखिए, जैसे अब हम हर चीज को अब समझते हैं, पहले नहीं हमारे को समझ थी, कुछ भी कपड़ा पहन लेते थे और कुछ भी खा लेते थे
0: और मेकअप भी।
1: अब हम इतने ब्यूटी, हाँ जी, ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं और समझ रखने लग गए, अवेयर हो गए हैं, तो हमें हर चीज की समझ है कि अब गर्मियां चल रही हैं तो हम लोग सबको समझ है कि हमें कॉटन पहनना चाहिए। इसी तरह मेकअप का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मेकअप लगा रहे हैं तो अब पारा कितना हाई रहता है, 45-46 डिग्री, तो उसके अनुसार ही हमें मेकअप प्रोडक्ट बहुत हल्के और बहुत छोटे छोटे, जैसे बिंदी भी है तो हम छोटी लगाएं, लिपस्टिक भी है तो हम लाइट लगाएं, लाइनर है तो हम ग्रे या ब्राउन कलर में लगाएं, तो हल्का हल्का जो हम प्रोडक्ट लेते रहेंगे वो फेस पे ज्यादा कूल नजर आता है।
0: मतलब वो हमारे कपड़ों के साथ जो है बिल्कुल परफेक्ट मैच आता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे गर्मियां बहुत बढ़ जाती हैं तो हमारे जो अंदर, जैसे कि गर्मियों का बहुत ही ज्यादा वो होता है, वो चेहरे पे दिखने लगता है, मतलब चेहरा मुरझाया सा लगता है, तो उस टाइम हमें एक टोनिंग, फेस को टोन करने की जरूरत होती है ताकि वो चेहरा ग्लो कर सके, चमक सके, क्योंकि मेकअप भी उसी पे ज्यादा बेहतर लगता है, जो चेहरा जो है अपने में एक नेचुरल सी चमक रखता है। तो वो चमक को बरकरार रखने के लिए हम ऐसे घरेलू उपाय कौन से करें, अगर हमें प्रोडक्ट, हम बाहरी प्रोडक्ट को यूज ना करना चाहते हैं तो?
1: देखिए, जैसे अगर हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम हल्की सी जैसे कच्ची कच्ची बर्फ लेके और एक टॉवल में रख सकते हैं,
0: जी जी जी,
1: और हल्के दबाव के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, पूरा डायरेक्ट आइस लेके फेस पे नहीं, लेकिन हल्का हल्का लेके उसको वाटरप्रूफ बना सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: उसके बाद जैसे आप कोई भी लोशन लगा रहे हैं या कोई भी बेस लगा रहे हैं तो उसे बहुत हल्का हल्का आप फेस पे लगाएं।
0: अच्छा,
1: तो उससे आपकी जो पैचेस वाली जो प्रॉब्लम है, या मेकअप यह है कि 2-3 घंटे तो अच्छा लगता है, उसके बाद वो मेकअप पैच में दिखाई देता है या धीरे धीरे टूट के गिरने लगता है, तो उस सिचुएशन से आप बाहर रहेंगी।
0: अच्छा, कुछ फेस पैक्स भी बता दीजिए जो हमारी बहनें यूज कर सके गर्मियों में।
1: देखिए, संदल इस वक्त जो सबसे ज्यादा ठंडा है, चंदन पाउडर है,
0: जी जी,
1: खीरा है,
0: जी जी,
1: पुदीना है, इस तरीके के जो फेस पैक हैं वो आपकी स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। खीरा है, आप उसको घिस के हल्का हल्का दही में लेके पूरे फेस पर लगा सकते हो, तो जो डेली बाहर काम करने वाली महिलाएं हैं तो उनको काफी तसल्ली मिलती है। दूसरा, आपका ये मुल्तानी मिट्टी है, उसको थोड़ा सा ठंडा करके दही में नींबू डाल के उसको फेस पर लगाओ।

0: उससे आपका चमक भी बनी रहती है और पोर भी बंद रहते हैं, जो इस आपकी स्किन की नमी को कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरह के पैक हैं जो स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं।
1: अच्छा, हमारी बहनों ने कैसे सुना कि जब भी वो रायता बनाया करें तो दही, और जब खीरे का रायता बनाएं तो उसमें नमक डालने से पहले कुछ अपने लिए निकाल लें ताकि वो फेस पे भी अपनी यूज कर सकें। अमिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हम बहनों को अपने मेकअप को बरकरार रखने की इतनी अच्छी तरकीब बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी बहनें सुन रही थी ये भेंट पाता, गर्मियों का मेकअप और जरूरी सावधानियां, इसमें जानकारी दे रही थी अमिता शर्मा और उनसे बातचीत कर रही थी सीमा सिंह। जी हाँ बहनों, मेकअप की सावधानी तो हमने सीख ली और मेकअप भी हम करके जाएंगे ही, क्योंकि जहाँ भी हमें मेकअप करके जाना है तो किसी समारोह, पार्टी या महफिल में ही जाना है ना, तो महफिल भी रंगीन तो होगी ही जब हम सुंदर बनकर जाएंगे।

जी हाँ मैनू, हम सभी महिलाओं की हर चीज़ के प्रति जिम्मेदारी है, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा पर्यावरण ही क्यों ना हो। महिलाओं के घर के प्रबंधक होने के नाते महिलाएं स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वस्थ परिवार की भागीदारी में महिलाएं ही सर्वोपरि हैं। घर प्रबंधन को लेकर उनके निर्णय कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण पूरे परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हैं। और बहनों, जैसे कि पर्यावरण को भी सुरक्षित करते हैं, और वो किस तरह, अर्थात गीला कचरा और सूखा कचरा हमारे किचन से ही प्रारंभ होता है, उसके लिए हम गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करके हम पर्यावरण को भी स्वस्थ कर सकते हैं। इसी तरह जल की बचत करके, ऊर्जा का संरक्षण करके भी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो बहनों, घड़ी की सुई हमें संकेत कर रही है कि हम आपसे अनुमति लें तो वनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की अंतिम गौतम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी अंतिम गौतम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस मंगलवार यानी आज दिनांक 7 जुलाई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ फसलों में उर्वरकों का उचित प्रयोग। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, विषय विशेषज्ञ एवं मृदा वैज्ञानिक KBK मथुरा। किसान भाइयों, टिकाऊ खेती के लिए हरी खाद, कंपोस्ट खाद एवं जैविक उर्वरकों के प्रयोग से खरीफ फसलों में उर्वरकों का उचित प्रबंधन एवं प्रयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, विषय विशेषज्ञ एवं मृदा वैज्ञानिक KBK मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, विषय विशेषज्ञ एवं मृदा वैज्ञानिक KBK मथुरा। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:15 से शाम 6:45 तक, यानी आज सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा देशपांडे, सुरेश बाडिकर और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है चांदनी। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से सवारा है शिव हरि ने।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म का नाम है निगाहें, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म का नाम था निगाहें, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुणे जिले के घाट क्षेत्र लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने

0: ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces...
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
4: आओ चलो।

0: थॉट्स नो कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है।

0: इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई

0: 147 मीटर है।
1: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं हैं, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खा दे रहा।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की

0: होती है, बताओ कैसे?
1: हर साल पानी चढ़ता है।
0: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
0: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
0: हार गए?
1: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
0: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
0: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: श्वेता तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता, बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं, तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार, उमंग, उमंग, उमंग,
5: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे कार्यक्रम

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज के जीवन में जो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं के बीच में देखने को मिल रही है वो है नशावृत्ति। अधिकांश युवा अपने खराब संगत कह लीजिए या कहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, अगर वो असफल हो जाते हैं तो कुछ युवा हमारे नशे की ओर अग्रसित हो जाते हैं। सबसे पहली बात तुम यही कहेंगे कि नशे से युवाओं को क्या सभी को दूर रहना आवश्यक है। नशे से दूर रहने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को आप सकारात्मक रखें, तनाव के स्वस्थ विकल्प जैसे व्यायाम ध्यान अपनाएं और बुरी संगति से बचें। नशा मुक्ति एक प्रक्रिया है, इसमें मानसिक मजबूती और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नशे से दूर रहने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, अगर वो करें और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखें तो नशा छोड़ने में हमें बहुत सहायता मिल सकती है। सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि आप नशा क्यों छोड़ना चाहते हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, परिवार या कैरियर। एक साथ छोड़ने के बजाय धीरे धीरे नशे की मात्रा कम करें, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, उन दोस्तों या स्थानों से दूर रहें जो आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तनाव से बचने के लिए योग, प्राणायाम और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही साथ आप अपने शौक को विकसित कर सकते हैं, जैसे आप संगीत सुने, किताब पढ़ें, किसी खेल में दिल लगाएं, लोगों के बीच में रहें, गपशप लड़ाएं और अपने परिवार के साथ रहकर आनंद लें। अपने आहार में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। नशे की तलब को शांत करने के लिए अदरक या पुदीने की चाय का सेवन फायदेमंद हो सकता है। यदि लत गंभीर है तो आप

डॉक्टर के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र में जा सकते हैं और डॉक्टरों से चिकित्सक सलाह व काउंसलिंग ले सकते हैं। इस प्रकार यदि आप कोशिश करेंगे तो नशे से काफ़ी हद तक अपने आप को आप बचा सकते हैं और नशे से अपनी मुक्ति पा सकते हैं।

0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं कहानी जिसका शीर्षक है बेटियां। कथाकार हैं चित्रा सारस्वत।
5: स्नातक करने के बाद पिता के कहने पर मीना ने बीएड भी कर लिया था। एक दिन पिता ने मीना को अपने पास बुलाकर कहा, मीना मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं, एक एक करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। पापा प्लीज मुझे आगे पढ़ना है, मैं एमए करने के बाद पीएचडी करना चाहती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी पढ़ने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा, जितनी मर्जी हो उतना पढ़ो। पापा की बात सुनकर वह उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन पिता की अचानक मृत्यु के कारण उत्तरदायित्व के एहसास ने महत्वाकांक्षाओं पर विजय पा ली थी। मीना ने 20 साल की छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। 7 साल बाद जब दो बड़े भाई और बहन अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने कहा, जी अब आपने हमारे लिए बहुत किया है, अब आप हमें घर संभालने दीजिए। जिम्मेदारियों के कंधे बदलते ही मीना ने सोच लिया कि वह अब अपना ब्याह कर घर बसा लेगी, और उसने कुछ समय बाद अपना विवाह कर लिया। शादी के 2 वर्ष बाद जब मीना ने पुत्री को जन्म दिया तो वह खुशी से फूली ना समाई। मीना की सास ने बच्ची का स्वागत करते हुए कहा, इस बार तो लक्ष्मी आई है, ठीक है पोते का मुंह कब दिखा रही हो। बेटी नीता अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि घर के बुजुर्गों ने मीना पर बेटे के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। फिर जल्द ही मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के होते ही सब उदास हो गए, मगर उसने सुशांत से कहा, हमारी इस बेटी का भी जोर शोर से स्वागत होना चाहिए, बेटियां बेटों से किसी भी तरह से कम नहीं होती, हम बेटियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देंगे, फिर देखिए कल आप इन पर ही गर्व करेंगे। ठीक है मीना, तुम इतनी भावुक मत बनो, यह मेरी भी बेटी है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर घर में बेटे की रट शुरू हो गई। मीना के संस्कार उस इजाजत नहीं देते थे कि वह घर के बुजुर्गों के सामने बहस करे। उसने सुशांत से बात की, सुशांत हम इन दो बेटियों की

परवरिश अच्छी तरह से करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर यह रट क्यों लगाई जा रही है? सुशांत पर अपने माता पिता का प्रभाव इतना था, वे उनकी ही भाषा बोल रहा था। वे मीना को समझाने लगा, मीना हमें एक बेटे की बहुत चाह है, कल को ये बेटियां ब्याह कर अपने अपने घर को चली जाएंगी तो हमारी देखभाल के लिए बेटा ही हमारे साथ रहेगा। कोमल स्वभाव की मीना पति की बातों में आ गई। इस बार जब वह गर्भवती हुई तो उसे 3 बच्चों की परवरिश, ऊपर से बढ़ती हुई उम्र, ऊपर के स्वास्थ्य पर हावी होने लगा। मीना को लंबी छुट्टियां लेनी पड़ी जो वेतन रहित थी। समय पूरा होने पर मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी मनोकामनाओं के पूरे होते देख सबके चेहरे पर खुशी छा गई। बच्चे को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसे ऑक्सीजन दी जाने लगी। डॉक्टरों ने बताया बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मस्तिष्क को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, इसलिए उसके दोनों हाथ और पैर विकृत हो गए। ऐसा शायद गर्भ अवस्था के दौरान मीना की बढ़ती उम्र और कमजोरी के कारण हुआ था। इसके बाद पैसा पानी की तरह बहाने बावजूद मीना का बेटा अरुण स्वस्थ नहीं हो पाया, वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया। मीना और सुशांत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो सुशांत बेटा चाहते थे जो उनके बुढ़ापे की लाठी बने, अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस बेटे की देखभाल कौन करेगा। दिन रात की चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। बच्चियां माँ को सांत्वना देने लगी, माँ आप पहले की तरह हस्ती बोलती क्यों नहीं हो, भाई की देखभाल हम सब मिलकर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बच्चियों की बातें सुनकर मीना उन्हें गले लगाने लगी, अपने आप को बदलने की कोशिश भी करती रही, पर फिर वही ढाक के 3 पात। वास्तव में बच्चियों की बातों से मीना आत्मग्लानी से भर गई। वह अपने आप को कोसती, अरुण को इस दुनिया में लाकर उसे क्या मिला, बच्चियों के साथ उसने अन्याय कर दिया है, एक और बच्चे को इस दुनिया में लाने के अपने निर्णय पर अटल ही क्यों नहीं रह सकी। एक तो बढ़ती उम्र में कमजोरी, ऊपर से शरीर मानसिक पीड़ा, मानसिक चिंताएं शरीर को दीमक की तरह खोखला कर देती हैं। दुखों का सामना न कर पाने की स्थिति में दुर्लभ शरीर कमजोर इमारत की तरह भरभरा कर गिर जाता है। यही हाल हुआ मीना का। एक रात जब वह सोई तो फिर उठी ना सकी, वे चिर निंद्रा में विलीन हो चुकी थी। मीना की सास की बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ना था कि वे सब कुछ संभाल सकें। कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया से कूच कर गई। पत्नी और माँ की विरह वेदना से ग्रसित सुशांत एक जिंदा लाश बनकर रह गया। उनकी 2 बड़ी बेटियां जैसे रातों रात बड़ी हो गईं। लड़कियां बारी बारी से अपने भाई का ध्यान रखती थी। दोनों बड़ी बहनें भाई को दैनिक जरूरतें, खाने पीने का ध्यान रखती थी। नीता ने अपनी सबसे छोटी बहन प्रिया को हिदायत दे रखी थी कि वह अरुण के पास बैठकर पढ़ाई करे, कहानी की पुस्तकें जोर जोर से पढ़े ताकि अरुण भी उनका मजा ले सके। लड़कियां बारी बारी से अपने भाई को पढ़ाती भी थी, पर वह अपने विकृत हाथों की वजह से कुछ लिख नहीं पाता था। उसके हाथों के मुकाबले उसके पांव कम विकृत थे। लड़कियों ने महसूस किया कि अरुण के पैरों की उंगलियों के बीच पेंसिल फंसा देने पर वह लिखने लगा था कि लिखावट अस्पष्ट होने पर भी जोर देने पर पढ़ी जा सकती थी। कभी कभी अरुण कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता था तो कुछ चित्र उभर कर आ जाते थे। बहनों ने जब देखा कि अरुण चित्रकारी में रुचि ले रहा है तो उन्होंने उसके लिए एक गुरु की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, घर बैठे ही इंटरनेट में उन्हें एक ऐसा गुरु मिल गया जो अपने हाथों से असक्षम बच्चों को पैरों की मदद से चित्रकारी करना सिखाता था। अरुण बहुत मन लगाकर सीखता था, देखते ही देखते वह इस कला में माहिर हो गया। एक दिन ऐसा आया जब बहनों ने अरुण के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी काफी कामयाब रही, अरुण के चित्रों को बहुत सराहा गया, चित्रों की अच्छी बिक्री भी हुई, बहुत से ऑर्डर भी मिले। फिर अरुण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक विदेशी संस्था जो विकलांगों की मदद करती थी, उन्होंने इसे देखा और उसके बाद अरुण के पास विदेशों से भी ग्रीटिंग कार्ड डिजाइनिंग करने के लिए ऑर्डर आने लगे। अरुण अब डॉलर में कमाने लगा। सुशांत अब काफी संभल चुके थे। वक्त घावों को भर ही देता है। एक एक करके उन्होंने अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी कर दी।
अरुण अब बड़ा हो गया था इसलिए उसकी

0: देखभाल में दिक्कतें आने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने उनकी सुन ही ली। मीता इस बार जब अपने मायके आई तो उसे अपने साथ आसिम को ले आई, जो बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। असीम थोड़ा पढ़ा लिखा व बेरोजगार लड़का था। अरुण असीम को मोटी रकम पगार के तौर पर देने लगा। असीम जैसे साथी पाकर अरुण बेहद खुश था। एक दिन टीवी वाले उनके घर पर आए, वे अरुण का इंटरव्यू लेना चाहते थे। कैमरा अरुण की तरफ घुमाकर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने अरुण का परिचय देने के बाद कहा, अरुण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हाथ पैर सही सलामत रहने पर भी लोग अपनी असमर्थता का रोना रोते हैं। अपने पैरों की उंगलियों की सहायता से अरुण जिस तरह जानवर का चित्र बनाता है, वैसा शायद हम अपने हाथों से भी नहीं बना सकते। अरुण ने यह साबित कर दिया है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरुण, अब आप बताइए कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अरुण ने कहा, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी बहनों की बदौलत हूँ। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। बहनों ने सिर्फ मुझे माँ का प्यार ही नहीं दिया, बल्कि मेरी प्रतिभा को पहचान कर मेरे लिए गुरु की व्यवस्था भी की है। आज मैं अपने पिता, गुरुजी और सबसे बढ़कर अपनी बहनों का आभारी हूँ। अरुण की बातें कुछ अस्पष्ट सी थी, इसलिए असीम अरुण द्वारा कई बातों को दोहराने के लिए आगे आया। सुशांत वहाँ और ठहर ना सके, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मीना का फोटो हाथ में लेकर वह विलाप करने लगे, मीना देख रही हो अपने बच्चों को, उनकी कामयाबी को? काश आज तुम हमारे बीच होती, तुम्हें तो शुरू से ही अपनी बच्चियों पर विश्वास था। मैं ही तुम्हारे विश्वास पर विश्वास नहीं कर पाया और तुम्हें खो बैठा, लेकिन आज मैं एक फक्र के साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसी होती हैं बेटियाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए भी पूरे घर को संभाला, यहाँ तक कि मुझे भी अपने आप को बनाए रखा और मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी।
1: अभी आपने सुनी सुरक्षित कहानियां बेटियां। कथाकार थी चित्रा सारस्वत और अब कार्यक्रम में आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।
1: और अब इसी के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार और

राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। ये हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा खरीफ फसलों में उर्वरकों का उचित प्रयोग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रविन्द्र कुमार राजपूत। श्रोताओं, यदि आप भी हमारे विशेषज्ञ से खरीफ फसलों में उर्वरकों का उचित प्रयोग के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 25:30-135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर हो जाएगा 0565-25:30-135। कार्यक्रम में फोन करने का समय याद रखिएगा संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य।

संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा 7:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा लालच बुरी बला है। कथाकार होंगे नंद किशोर वर्मा।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। रात्रि 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे।

0: एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी चॉकलेट।
1: रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग चंद्रकोंस में ख्याल गायन। कलाकार होंगे पंडित अजय चक्रवर्ती। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। और नीलमणि बहन आपको भी हमारी बहुत बहुत राम राम।
7: हाँ बहन भैया, सब बहन भैया को राम राम, आपको भी राम राम।
6: हाँ डॉक्टर साहब आपको भी राम राम
8: जी। नमस्कार।
7: आप देखो बहन भैया, जैसे कि हम सभी जाने हैं कि जो खरीफ का मौसम है हमारी कृषि को सबसे महत्वपूर्ण मौसम है।
6: बिल्कुल।
7: और जा समय धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, उड़द जैसी जो प्रमुख फसल है इनकी खेती करी जाए है। अच्छी वर्षा और उचित पोषण मिलवे पर ही इन फसलों से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करो जा सके है। और जाले उर्वरकन को संतुलित और वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करवो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने खेत की माटी की जांच करानी चाहिए। जो तो अपनी खेती अपने किसान भैया जाने ही है, पर जाते ही पता चल जाए

0: कि माटी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में उर्वरक देना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: बिना माटी परीक्षण के ज्यादा या कम उर्वरक देवते उत्पादन भी प्रभावित हुए है और अनावश्यक खर्च भी बढ़े हैं। अब बात आवे कि खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह से जो है सड़ी भरी गोबर की जो खाद है कंपोस्ट को प्रयोग जरूर करें, जाति माटी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीवन की सक्रियता बढ़े है। रासायनिक उर्वरकन का प्रयोग हमेशा संतुलित मात्रा में करना है। केवल यूरिया को ज्यादा प्रयोग कर देते फसल को पूरा पोषण ना मिले। जाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश को संतुलित उपयोग करें। अब बात आवे फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा बुवाई के समय दे में, शेष नाइट्रोजन फसल की बढ़वार के अनुसार दो बार दे में। अगर खेत में जिंक, सल्फर या दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इनको प्रयोग करें। अब जो बात आवे है दलहनी फसलन में राइजोबियन जैसे जैव उर्वरकन है तो इनको प्रयोग करें। संग ही भारी वर्षा से पहले उर्वरक डालवे ते बचें, क्योंकि वर्षा के संग उर्वरक भेजा में है और इनको लाभ फसल को ना मिल पाए, है ना। एक जरूरी बात के संतुलित उर्वरक प्रयोग से फसल की पैदावार बढ़े है, गुणवत्ता में सुधार होवे, लागत कम होवे और माटी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे है। जाते किसान भैयान की आय बढ़े और पर्यावरण संरक्षण में हो सहायता मिले है। यानी वीरेंद्र भैया हम ये कह सके है कि सही उर्वरक, सही मात्रा, सही समय, सही विधि अपनाए के हम अधिक उत्पादन के संग संग अपनी माटी को भी स्वस्थ रख सके हैं, है ना। जैसे कि हमने बात अपने खरीफ फसल की करी है, इनमें उर्वरकन को जो उचित प्रयोग है, बाकी बात करिए किसान भैया समझ गए होंगे कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन इनको अपनो कार्यक्रम हुए है हेलो किसान वाणी, और बेसब्री से इनको इंतजार रहे है कि आज को का विषय होगा और इनकी जो समस्या हैं फोन के माध्यम से घर बैठे ही समाधान है जाए हैं। तो भैया खरीफ फसल में उर्वरकन को उचित प्रयोग ये विषय है हमारे आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम को। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, आपकी जो भी समस्या है खरीफ फसल से संबंधित आप तुरंत डायल करें हमारा फोन नंबर और पामें अपनी समस्या को समाधान।
1: बिल्कुल जी, तो पता ये भैया 0565-2530-135 हमारी जो फ़ोन नंबर है या कार्यक्रम में सम्मिलित है वे के। डॉक्टर साहब आपको स्वागत है कार्यक्रम में, और सबसे पहले जैसे कि नीलमणि बहन बताई गई है कि भाई उर्वरकन को हमें उचित प्रयोग करना है, जैसे कि दूसरी भाषा में कह लें कि दक्षतापूर्ण प्रयोग करना है, तो या तो सामान्य तो आप हमारे किसान भाइयों से कहा कहना चाहेंगे।
2: देखिए किसान जरूरत से ज़्यादा उर्वरक डालते हैं वो जाने और अनजाने में हो जाता है
1: जी,
2: जबकि फसल की पैदावार तभी अच्छी आती है जब सभी पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित रहती है। ऐसा नहीं कि केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, पता लगे खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो रही है। धान जब हमारा घर आता है कट के तो पता लगे उसमें आधा थोता निकलता है,
1: हाँ जी,
2: वो होता है एक दूसरे तत्व तो बोरॉन की कमी के कारण, और हम उसको वृद्धि और बढ़वार के पोषक तत्व तो दिए जा रहे हैं। जब वजन बैठता है तो कहते साहब आप हवा निकल गई है, तो आप मान के चलिए पौधे में वृद्धि और बढ़वार के लिए जो 17 पोषक तत्व तो हैं उनकी संतुलित मात्रा खेत में देनी चाहिए ताकि फसल उसका अपटेक कर सके। अच्छा, इसको देने के जो माध्यम है वो भी जमीन में भी दे सकते हैं मिलाकर। दूसरा, अगर उर्वरक महंगा है और उपलब्धता बाजार में कम है तो आप पर्णी छिड़काव के रूप में दे सकते हैं। पर्णी छिड़काव में बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है, मात्र 3-4% में ही काम हो जाता है, और वो फर्टिलाइजर अगर आपको चाहिए तो आपको 1 क्विंटल जरूरत पड़ती है, इसमें 4-5% से ही काम चल जाता है पानी छिड़काव।
1: डॉक्टर साहब एक भैया लाइन पे पहले उनसे बात कर लें। हेलो किसान वाणी, राम राम जी।
3: जो हमने अभी कल 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को धान लगाए,
1: अच्छा जी,
3: और डीएपी वगैरह,
1: हाँ,
3: तो अब कोई दवा लगेगी बाकी किसी वाली मात्रा पे?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब बता रहे, डॉक्टर साहब 2 दिन भयन के धान ने लगे,
2: 2 दिन हुए हैं धान में, अगर आपने पोटास और फास्फोरस की मात्रा नहीं लगाई है तो फसल को अभी बढ़ने दें, उसके बाद 18-18-18 या 19-19-19 आता है जल विलेय, 1 किलो का पैकेट आता है, 100 लीटर पानी में घोल के 1 पक्का बीघा में, मात्रा रखें, ध्यान रखें, 100 लीटर पानी में एक

0: किलो का पाउच घोलेंगे और करीब करीब फसल हमारी जब 80% धान की पत्तियां जमीन को ढक लें तब आपको पर्णीय छिड़काव करना है, और 10, 12 या 15 दिन के अंतराल पे फिर एक स्प्रे करना है, तो आपकी जो फास्फोरस और पोटाश की जो मात्रा त्वरित की कमी है वो उसको पूर्ति कर देगा।
1: बिल्कुल। नाम बताओ, कौन सा नाम बता
0: ये
1: रहे सर?
0: जल विलेय उर्वरक आता है, 1-1 किलो के पाउच में घोल के रूप में डालते हैं, जिसका ग्रेड होता है 18-18-18। एक और आता है, दूसरा ग्रेड है 19-19-19, तो ये डाल देते हैं इन
1: अठारह
0: सब।
1: अठारह के नाम
0: और
1: थे।
0: अगर ये नहीं मिलते हैं आपको तो 1 सवा किलो DAP ले लें, उसको शाम को भिगो दें कपड़े से छान के, और 100 लीटर पानी में उसको मिला के और स्प्रे कर दें 2 बार 10 दिन के अंतराल पे। जब

0: जल विलेय उर्वरक आता है, एक एक किलो के पाउच में घोल के रूप में डालते हैं, जिसका ग्रेड होता है 18 18 18। एक और आता है, दूसरा ग्रेड है 19 19 19, तो ये डाल देते हैं इन
1: अठारह
0: सब।
1: अठारह के नाम थे।
0: और अगर ये नहीं मिलते हैं आपको, तो एक सवा किलो DAP ले लें, उसको शाम को भिगो दें कपड़े से छान के, और 100 लीटर पानी में उसको मिला के और स्प्रे कर दें 2 बार 10 दिन के अंतराल पे, जब पौधा हमारा 80% जमीन को ढक ले। आपको अजी नहीं, केवल ये स्प्रे जाएगा, कीटनाशक के साथ नहीं जाएगा, अलग जाएगा, मेहनत थोड़ी आपको पड़ेगी। ये बिल्कुल मत करना कि पता लगे नैनो उर्वरक के साथ कीटनाशक मिला देते हैं, बिल्कुल ना करें। जो चीज़ जिसकी है, जो खुराक दे रहे हो, वही आप उसको दें। ये खुराक दे रहे हो और उसमें खरपतवार की खुराक दे रहे हो मारने की, कोशिश ये करें।
1: दोनों चीज़ अलग अलग हैं डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने बताई भाई, हम भोजन कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, और दवाई खा रहे हैं वो अलग चीज़ है।
0: जी,
1: भाई दवाई जब खाएंगे जब हम बीमार रह जाएं, लेकिन भोजन तो हम नित्य करेंगे। एक भैया ऑनलाइन पे हैं। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो,
1: हाँ राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं भगवान सिंह बोलूँ सर।
1: अच्छा हाँ, कार्यक्रम में स्वागत है। पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। खरीफ फसल
2: एक
1: में
2: चिंता सुना,
1: उर्वरकों को प्रयोग।
2: जिला अलवर राजस्थान।
1: अच्छा राजस्थान से बोल रहे हैं, तो पूछो आज खरीफ फसल में उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित पूछो क्या पूछना चाह रहे हो।
2: एक अनार को पेड़ है सर,
1: अच्छा जी
2: और उसमें क्या है कि फल तो आता है पर पकता नहीं है, पके
1: पता ना आ रहे,
0: पकता नहीं।
2: ना फल तो आवे।
1: अच्छा पके ना आए। हाँ वैसे तो खरीफ फसल की खेती के बारे में पर बागवानी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। हाँ
0: देखिए, जब भी आप फल वृक्ष लगाएं, तो एक इसका प्रॉपर तरीके से आप इसका गड्ढा खोद के लगाएं, और इसमें हर 6 महीने में गुड़ाई करके पोषण, जैसे घूरे की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाडिव कंपोस्ट है, इसका समावेश करें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनको भी जमीन में गुड़ाई करते समय मिक्स कर दिया करें। तो ऐसा नहीं है कि फल है और पकता नहीं है, और कोशिश करें जब भी फल वृक्ष किसी के लगाएं तो कम से कम 2 या 2 से अधिक पौधे लगाएं, कोशिश करें। जैसे पपीता का एक पौधा लगाएंगे तो उसमें फलत नहीं आएगी, आंवले का एक पौधा लगाएंगे फलत नहीं आएगी,
1: अच्छा
0: अनार का है आपका फूल आता होगा, 100 फूल आते होंगे, 10 पे फल आता होगा, झड़ जाएगा।
1: बिल्कुल
0: तो एक, क्योंकि पॉलिनेशन का सिस्टम होता है,
1: हाँ।
0: क्योंकि पर परागण से निषेचन अच्छा होता है जो
1: एक
0: फसलें
1: भैया,
0: हैं,
1: एक भैया
0: तो
1: लाइन पे।
0: इसमें जो पकता नहीं है। जी,
1: हेलो किसान वाणी।
2: वीरेंद्र भैया और नीलमणि बहन जी को मेरी राम राम।
1: राम
2: जी
1: राम साहब,
2: नमस्कार।
1: राम राम साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। महेंद्र
2: और
1: सिंह
2: साथ
1: जी बोल
2: में,
1: रहे हैं।
2: जी, साथ
1: हाँ
2: में आदरणीय डॉक्टर साहब को भी राम
0: जी
2: राम।
0: जी नमस्कार
1: हाँ,
0: नमस्कार जी।
1: पहचान गए आपकी आवाज़ थी। हाँ स्वागत है कार्यक्रम में। आज खरीफ की फसलन में उर्वरकन के प्रयोग से संबंधित रखे हो विषय, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो आज।
2: मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे किसान जो अनजान होते हैं उनको ये पता नहीं कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी की जांच बिना कराए ही और उर्वरक अंधाधुंध फेंक रहे हैं,
1: बिल्कुल सही कह
0: मिल
1: रहे
0: रहा है
1: हैं।
0: इसलिए फेंक रहे हैं।
2: तो मैं ये जानना चाहता हूँ साहब कि जा में मतलब पहले तो उनको अपनी मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए कि किस मात्रा में हमें उर्वरक देना है।
1: जी, अब
2: अच्छा,
1: आप
2: ये
1: पूछो। वो तो चलो डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं, उनको कई बार बता दिया है,
2: अब
1: लेकिन
2: हमारी सुनो, हम क्या पूछ रहे हैं।
1: हाँ बताओ।
2: हमारी पृष्ठभूमि ऊसर है और हम बा में हरी ढेंचा डालते हैं और ऐसा कोई 3 3 फुट को बाद जुतवा देते हैं, तो इसमें अगर धान रख दें तो वह कछु मिलेगो?
0: देख, बिल्कुल मिलेगा। अगर ढेंचा वहां पे उग आया है तो आप
2: हाँ
0: उसमें
2: मुझे बताइए।
0: धान लगाइए, और मोटा वाला धान लगाइए जो ऊसर को पनपता है। और इसमें नर्सरी रखेंगे आप 28 से 30 दिन पुरानी बूढ़ी नर्सरी,
1: हाँ
0: और फसल जो नर्सरी के प्लांटेशन करेंगे कम से कम 2 से 3 पौधा करेंगे, ये मान के चले 3 गुना नर्सरी ज़्यादा लगेगी यहाँ पे। और मोटा वाला धान करें, 2 साल आप मोटा वाला धान कर लीजिए ऊसर वाला, उसके बाद आप कोई भी धान करिए, जमीन एकदम सुधर के दुरुस्त आ जाएगी। कोशिश करिए 3ों साल ढेंचा की हरी खाद 5 फुट यानी कंधे के बराबर हो जाए पाटा लगा के हरी खेत में मिलाइए, सूखने के बाद नहीं, हरी मिला के तुरंत पानी भर दीजिए, वो खाद का काम करती है।

0: अगर वो सूख गई तो बाबूजी खाद का काम नहीं करेगी।
1: बिल्कुल
2: डॉक्टर साहब, हम 2-3 साल से उसमें मूंग और हरी खाद और उपजा मते और फिर वह हम जुतवा देते हैं और फिर उसमें पानी काट देते हैं, सलाह जला देते हैं, तो अब हम धान करवे के मूड में।
0: बिल्कुल करिए, आप धान पतला वाला मत करिए, मोटा वाला धान करिए जो ऊसर सैलिनिटी वाला आता है, CSR 36 है, CSR 23 है, या ये नहीं मिलता है तो मोटा वाला नर्सरी, ये वाली नर्सरी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगी। और अगर आपके पास यही है तो कोशिश करिए इसको एक हफ्ता और पुरानी हो जाने दीजिए, बूढ़ी नर्सरी हो जाए, लेकिन 2 से 3 पौधे लगाइए, चलेगी।
1: बिल्कुल
2: जी, धन्यवाद सर
1: जी। हाँ, देखो जी डॉक्टर साहब, हमारे बहुत जागरूक किसान हैं और हर प्रोग्राम में, हमारे हर कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ मैं। कितनी बढ़िया बात पूछी इन्हें कि ऊसर खेत है, वहाँ में हम ढेंचा की खाद जोत रहे हैं तो क्या धान है जाएंगे। आपने सही बताई, जा खेती में ढेंचा उपजावे, वो मूंग उपजावेगी, वो ऊसर नहीं मानो जाएगो, वो तो उपजाऊ जमीन हैगी
0: जी।
1: हाँ, एक भैया ऑनलाइन पे, हेलो किसान वाणी, राम राम जी। हाँ राम राम साहब, कार्यक्रम में स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पाए।
0: देखिए, ऊसर की जो मिट्टी होती है, अगर उसमें ढेंचा उगे आया है और फिर उसमें जो धान की फसल, अगर आप पहली धान की फसल लेंगे और उसमें मोटा वाला धान जो आप कहते हैं ना ऊसर को सहन करने वाला, एक तो प्रजाति वैसी सिलेक्ट करें जो ऊसर की हो, और इसके लिए भी नर्सरी पुरानी रहे 28 से 30 दिन की।
1: अच्छा।
0: और एक जगह इसमें हम लगाते हैं सिंगल पौधा, उसमें लगाएंगे 2 या 3 पौधे एक साथ,
1: जम जाए एक दूसरे के साथ,
0: पकड़ जाए, क्योंकि उसमें टिलरिंग कम हो पाती है ना। अगर 2-2, 3-3 की भी टिलर हो गई एक पौधे से, तो आपके हो गए 22-23 पौधे हो जाते हैं उसमें।
1: बिल्कुल,
0: 6-6, 7-7 भी आ गए उसमें, क्या अकेले में ही टिलिंग अच्छी हो जाती है। और मोटा धान लवण को सहन कर लेता है, ऊसर को सहन कर लेता है, अन्य फसल हमारी इसी तरह। जब धान काटेंगे तो उसके बाद आप देख लीजिए, जौ उगा दीजिए, जई उगा दीजिए, बरसीम उगा दीजिए, चुकंदर है, पालक है, 2 साल आप कर लीजिए, उसके बाद सामान्य फसल करिए। तीसरी चीज ये, पानी भी आप देखिए, ऐसा ना हो कि पता लगा उसका TDS लेवल यानी हाई लेवल पे हो, PPM बढ़ा हुआ है, यानी 1000 TDS, TDS उसका 1000 PPM से कम है, तो आप फसलों में पानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
1: मोटी भाषा में किसान कैसे समझे TDS है, खारा पानी समझे?
0: देखिए, खारा पानी 1000 लवणों की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें किस तरह के लवण है। अगर सैलिनिटी बढ़ाने वाले हैं तो हम कह देते हैं खारी पानी है।
1: अच्छा।
0: सैलिनिटी को नहीं बढ़ाते हैं तो कह देते हैं कि नहीं। और ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में डॉक्टर रिकमेंड करता है 150 से लेके 300 के बीच में, और पशुओं के लिए 500 तक है। उसके बाद 500 से लेके 1000 TDS तक आप फसलों में लगा सकते हो। 1000 TDS से ऊपर का जितना लगाओगे खेत में, एक सिंचाई के साथ 5 सेंटीमीटर की सिंचाई में 5 क्विंटल लवण चले जाते हैं आपके खेत में। और पता लगे आप चार पानी गेहूं में लगा रहे, कहीं कहीं 5 लगाते हैं, वैसे तो 5 रिकमेंड है, तो 25 क्विंटल लवण आपके खेत में चले गए। अब आप बताइए, 5-7 क्विंटल तो केवल पौधा आप टेक कर पाती है, पोषण जो होता है उसमें, बाद बाकी आपके खेत में रेह पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं, लवण एक्यूमुलेट होते हैं, बढ़ाते हैं। अब किसान कहता है, बाबू जी फसल हमारी बीज नहीं पकड़ रही है, बुवाई की है, रेह मार रही है, सील मार रही है, तो वो सील क्या है? वो पसीजन होती है लवण की, आप उसको नमी समझ बैठते हैं, वो नमी नहीं होती है, वो पसीजन ऐसी होती है जो मृदा कण पे चिपकी रहती है, पौधे को दाने को मिल नहीं पाती है बीज को हमारे, और इसलिए बीज फूलता नहीं, इसलिए जमता नहीं है। और किसान परेशान होता है कि नहीं साहब नमी तो थी, तो कोशिश करें ऐसे खेतों को गीला बोने की, चिपचिपा बोने की।
1: अच्छा।
0: बीज को भिगो लें और रात को भिगो दें, सुबह निकाल के 2 घंटे हवा में सुखा दें, उसके बाद आप बुवाई करिए गीला बोने की। और जब ऐसे जगहों में अन्य फसलों के, जिस फसल के बीज नहीं उपजते हैं, बाबू जी बिल्कुल उसमें मत बोइए, नुकसान होगा। कोशिश करिए, वहां गेहूं नहीं उपज रहा है तो वहां जौ लगाइए, अगर जौ ढंग से नहीं उपज रहा है तो जौ का रेह वाली प्रजाति जैसे नरेंद्र बारले 1 लगाइए।
1: जी जी,
0: क्यों खेत को खाली छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बुवाई की जाए।
1: एक भैया और लाइन पे पूछना चाह रहे हैं, हेलो किसान वाणी। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ राम राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है
3: जी। सर मैं की फसल में सर जानकारी,
1: हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब बता रहे हैं।
0: देखिए, उर्वरकों के प्रयोग के बारे में दक्षतापूर्ण प्रयोग एक तो

0: जमीन में मिला के दिए जाते हैं बेसल के रूप में,
1: ठीक है। दूसरा ये है कि फोलियर एप्लीकेशन के रूप में दिए जाते हैं, जो महंगे उर्वरक हैं, उपलब्धता कम है, या हम बेसल में भूल गए हैं। तीसरा है हमारा जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर हैं, वो दो तरह से दिए जाते हैं, या तो जमीन में गोबर की खाद में मिला के खेत में दें, दूसरा लिक्विड है तो सिंचाई के साथ दें, तीसरा है बीज को उपचारित करके दें जैव उर्वरक। ये जैव उर्वरक सिलेक्टेड होते हैं, जैसे राइजोबियम है दलहनी फसल के लिए है, पीएसबी है फॉस्फोरस घोलक बैक्टीरिया है जो किसी फसल में आप लगा सकते हैं, इसी तरह ट्राइफोलियाई है वो बरसीम के लिए है, ये तीन चार आते हैं तो आप इनको लगा सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक खादें हैं, तो फसल चक्र जरूर अपनाएं, दलहनी फसल के साथ के बाद अदलहनी फसल भी लगाएं, और ढेंचा की हरी खाद लगाएं, सनई की हरी खाद लगाएं, और इसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद गड्ढे में सड़ी हुई खेत में डालें शाम के टाइम, और तुरंत खेत में मिला दें, जिससे उस घूरे की खाद या बात करें गोबर की खाद का पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवों का धूप की वजह से नुकसान न होने पाए, और ढेंचा की हरी खाद खेत में मिलाएं, जुताई करके तुरंत पाटा लगा के तुरंत पानी भर दें, या पहले पानी भर के तब उसमें इसको मिलाई कर दें, तो बहुत अच्छा काम करती है, अन्यथा सूख जाएगी तो फसल हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, यानी खाद अच्छी तरह से नहीं बनेगी। और पानी छिड़काव की बात है, हमने आपको पहले भी बताया जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है इनका 1% का घोल बनेगा 100 लीटर पानी में 1 किलो, और इसके बाद गंधक है कैल्शियम है मैग्नीशियम है आयरन है जिंक है, इनका सॉल्यूशन का घोल बनेगा आधा किलो 100 लीटर पानी में,
2: जी
1: और स्प्रे करिए आप 1 बीघे में,
2: जी
1: और इसके बाद कॉपर है बोरॉन है और मोलिब्डेनम है, ये तीन का सॉल्यूशन बनेगा 200 से 250 ग्राम
2: जी
1: 100 लीटर पानी में आप घोल के, इनकी क्षमता बढ़ानी। इफिशेंसी के लिए पौधे के जड़ के पास फर्टिलाइजर दें, उसके कनेक्टिंग एरिया यानी सराउंडिंग एरिया में दें, ऐसा नहीं पूरे 1 वर्ग मीटर में आपके 2 कपास के पौधे हैं और आप उसमें बिखेर के दे रहे हैं,
2: पूरे
1: तो
2: खेत में।
1: उसका प्लेसमेंट करिए ना पौधे की जड़ के पास, 10 दाने पड़ेंगे पौधे के पास दीजिए, पूरे खेत में बिखेरने से कोई मतलब नहीं है।
2: डॉक्टर साहब आपकी बात, एक बात याद आई, जब हम छोटे से थे तो हमने देखे किसानन को मक्का में उर्वरक डालते हुए,
1: वो
2: वो तो पौधा पौधा पे
1: पौधे की
2: डालते
1: जड़ के पास डालते थे। हाँ
2: हैं, पौधा पौधा पे। तो एक भैया लाइन पे पूछना चाह रहे हैं, हेलो किसान वाणी,
3: हेलो,
2: राम राम जी।
3: हम विपिन कुमार बोलेगा छोड़ी से।
2: हाँ पूछो जी विक्रम कुमार जी, रबी फसलन खरीफ फसलन में उर्वरकन की जो उचित प्रयोग है जा के बारे में, खरीफ फसलन में।
3: हम जी पूछना चाह रहे हैं बाजरा में कैसे करना चाहिए और जिंक कब डालना चाहिए बाजरा में।
1: देखिए अगर बाजरा में अगर आपको यूरिया पर्याप्त मिल रही, बाजरा बहुत ही हमारा सामान्य फसल में हो जाता है, बहुत अच्छे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
2: जी
1: तो इसमें आप अगर फोलियर एप्लीकेशन करना ही चाह रहे हैं, क्योंकि ये चारे की फसल है, हालांकि यहाँ दाने के लिए उपयोग करते हैं
2: हाँ
1: इसका, अच्छा है, तो नाइट्रोजन की कमी अगर आप नहीं डाल पाए, नाइट्रोजन की कमी है, अगर आपके पास फर्टिलाइजर कम है,
2: जी
1: तो आप 1 से 1.25% यानी 1 से 1.25 किलो यूरिया लें, 100 लीटर पानी में घोलें, इसके साथ भुजा हुआ चूना कितना आधा
2: अच्छा
1: किलो,
2: जी
1: उसको शाम को भिगो दें, छान के निथार के डाल के एक स्प्रे करें 100 लीटर पानी डाल के, 10 से 12 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें अलग से यूरिया बिखेरने की, 2 स्प्रे बराबर एक बेसल मतलब
2: अच्छा
1: एक छिड़काव ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। इसी तरह डीएपी है फास्फोरस, अगर इन तीनों की कमी है तो आप पाउच वाला ले आए 18 18 18 या 19 19 19, इनको 100 लीटर पानी में घोल के आप 2 बार स्प्रे कर दें,
2: अच्छा
1: अंतराल 10 से 12 दिन का अवश्य रखें, काम करेगा, क्योंकि बाजरा हमारा बहुत लो फर्टिलिटी लेवल में काम कर जाता है, ग्रो हो
2: जी।
1: जाता है। जी
2: अब डॉक्टर जैसे कि हमारे किसान भैया तो मोटी मोटी बात समझे, जैसे आजकल वो विक्की की बैटरी वाली वो चल रही है स्प्रे मशीन,
1: मशीन हाँ
2: तो वहाँ मुझे अंदाजा जहाँ तक है तो 25 या 20 लीटर पानी आम तो हो वो।
1: तो 5 20 लीटर आता है तो 5 टंकी बना लें,
2: हाँ
1: घोल एक जगह बना लें, उसके पांच पांच नपना बना लें कि
2: जी
1: हिसाब 5 गिलास में पहले घोलें, उसके बाद
2: हाँ
1: एक एक गिलास हर टंकी में डाल लें,
2: डालते रहें
1: तरीका यही है, ऐसा ना करें टंकी में डायरेक्ट घोलते हैं, ये
2: ना
1: भी
2: ना
1: तरीका
2: ना
1: गलत है।
2: हाँ अलग
1: और
2: गोल बना के और जो वहां पानी भर के टंकी में
1: हाँ
2: जब ऊपर एक गिलास वाको जो
1: मतलब 5 गिलास में बना लें, जितने टंकी में डालना पहले उतने गिलास पानी करके।

0: ये उसमें घोल बना लें, फिर एक एक गिलास हर टंकी में डालते जाएं। सिंपल तरीका है। बहुत से किसान क्या पाउच ही खोलेंगे दवाई का टंकी के अंदर, तो वो इफिशियंसी भी कम होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा।
1: एक भैया लाइन पे, हेलो किसान वाणी।
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार, और वीरेंद्र सिंह जी को भी मेरा नमस्कार।
1: हाँ, जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, स्वागत
2: है। सुरेंद्र सिंह सिसोदिया ग्राम पोस्ट छठीगढ़ा जिला मथुरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछो क्या पूछना चाह रहे हो आज
2: डॉक्टर साहब? तो मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोग बताते हैं कि कोई भी खरपतवार या चटरी मटर या खरतुआ मरतुआ को अगर हम मारने के लिए जुताई में अगर कोई दवा डाल दी जाए बुवाई से पहले, तो कैसा होता है सर, कैसा रहता है, इसके बारे में मैं अपने विचार रखे सर।
1: हाँ बिल्कुल।
0: नहीं, ये जुताई का मतलब आप खेत की तैयारी के समय की बात कर रहे होंगे।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: नहीं, ऐसी नहीं दवा आती है कोई भी, फिर वो जर्मिनेशन को दिक्कत करती है। ये प्री इमरजेंस जरूर आते हैं, तो आप उनका बुवाई के तुरंत बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। पेंडीमेथिलिन वगैरह है, प्री इमरजेंस है, और पोस्ट इमरजेंस
2: कई बार हमने बताया गया कि फसल से बुवाई से पहले अगर दो तो वो बाद में जो है होता नहीं है, फिर ऐसा बताया जाता।
0: नहीं, वो आपकी ठीक है, आजकल सिलेक्टिव आ गए हैं, नॉन सिलेक्टिव हैं। बहुत ऐसे हैं कि जिस वीड को मारना चाहेंगे, जिस खरपतवार को, उसका सिलेक्टिव केमिकल ही आ गया, आप वही मारेगा, बाद बाकी फसल को नुकसान भी नहीं करेगा। आप खड़ी रहती, जैसे धान में आप खरपतवार मारते हैं, एक दवाई आती है, हर किसान धान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता है। उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में जाके, अंदर जाके उसकी कम से कम 3 दिन की ग्रोथ को रोक देता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, हर एक तो नुकसान करता है। आते हैं केमिकल आते हैं, थोड़ा मैं पोषण के बारे में अगर आप पूछें तो बेटर रहेगा, क्यों खरपतवार का मैं विशेषज्ञ
1: नहीं हूँ। सही कह रहे हैं।
2: तो सर ये मतलब जैसे दवा है मतलब छिड़कने वाली बहुत बढ़िया रहती है या भरकने वाली अच्छी रहती है?
0: देखिए, खरपतवार कैसा है, इफिशियंसी क्या है, हर तरह का अलग अलग सिस्टम है।
1: हाँ।
0: कुल मिला के उसके कुछ सिस्टमेटिक होते हैं, सुनिए, कुछ सिस्टमेटिक होते हैं, कुछ कॉन्टेक्ट होते हैं। जो टच में आएगा मर जाएगा, कुछ उसके सिस्टम में जाके दिक्कत करता है।
2: अच्छा अच्छा।
0: कुछ उसमें भी सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव होते हैं।
1: जी
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार जी। देखो, बहुत अच्छी बात पूछी इनने के भाई के हम खरपतवारों को नियंत्रण फसल बोई भी तो पहले कर सकें का, पर जी उचित ना आए, हम तो जी चाह रहे हैं आप फसलें खूब बढ़ी है, जान दो जब खरपतवार दिखे तब वो हम स्प्रे दे दो।
0: इसमें क्या है, कौन सा खरपतवार हाँ, आएगा, क्यों हाँ, खरपतवार भी चौड़ी पत्ती का है, सकरी पत्ती का है,
1: जी जी,
0: पेरिनियल, मतलब किस तरह का है।
1: हाँ,
0: और कौन सी दवाई, क्योंकि हम फसल पता लगे कि अभी धान है, सकरी पत्ती का है, पता लगे किसी ने इसी के साथ सोयाबीन बोया या उड़द बो दिया तो वो चौड़ी पत्ती का है
1: जी।
0: अब हम चौड़ी पत्ती का डाल दिए हैं,
1: हाँ,
0: तो पता लगे वो साफ हो जाएगा।
1: डॉक्टर, पहली बात पे आते हैं जो हमने प्रारंभ करी, जैसे आपने कही के कचु जमीन हमारी ऐसी है वहां रेह पैदा है जाए और फसल पैदा ना हुए, तो वह रेह मारवे की या वह में उत्पादन लेवे की कोई ऐसा तरीका है?
0: कोई नहीं है, सिंपल सा है, फसल चक्र अपनाएं, दलहनी फसल के साथ अदलहनी फसल लें, ढेंचा की हरी खाद का 1 साल में समावेश जरूर करें, अगर समय नहीं मिलता है तो 2 साल में फसल चक्र में जरूर डालें। और ढेंचा की हरी खाद जहां पे रेह पनपना स्टार्ट हो गया है या पानी खराब है, तो भैया ये सबसे बढ़िया दवाई है, हरी खाद ढेंचा की या सनई की, 5 फुट की हो जाए, 45 दिन की पाटल, अगर उस खेत में नहीं उग रही है तो दूसरे खेत में उगाओ, वहां से काट के लाओ, ट्रोला में भर के लाओ या बिछाओ और
1: कूट दो,
0: जुताई करके,
1: जुताई से,
0: हैरो से काट के और पानी भर दो,
1: बिल्कुल
0: गीली खेत में मिलेगी तो खाद का काम करेगी और 2.5 साल तक आपकी खेत की सेवा भी करती है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरे साल भी अगर आप मिलाते रहे तो जो उर्वरता की परेशानी आती है बिल्कुल नहीं आएगी। और रासायनिक उर्वरक कम हो रहे हैं इसलिए जमीन का कार्बन की मात्रा बहुत कम हो गई है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, इतनी कम हो रही है। यही अगर 2-3 साल और रहा तो सभी खेत हमारे बांझ हो जाएंगे उर्वरता के कारण, क्योंकि केवल हम 3 तत्व तो देते हैं, डीएपी यूरिया पोटास दे दी। कुछ किसान कह देते हैं कि साहब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिए, जबकि इनका च्यवनप्राश खेत को देना चाहिए हरी खाद के तौर पर, सड़ी गोबर की खाद के तौर पर,
1: बिल्कुल
0: फसल अवशेषों के तौर पे, क्योंकि खेत से हम पता लगे 1 हेक्टेयर में 50 क्विंटल गेहूं ले जाते हैं, 70 क्विंटल भूसा ले जाते हैं
1: जी।
0: एक सीजन में।

0: खेत के अंदर पहुंच रहा है 7 कुंटल 8 कुंटल 9 कुंटल, बीज मिला दें तो 10 कुंटल, तो खेत के गर्भ में जो पोषण था वो तो मैं चूस रहा हूं, हवा पानी प्रकाश से जो पौधे को भोजन मिल रहा है वो उतना अपटे कर रहा है, लेकिन जो उसका जीवन का आधार है कार्बन वो है ही नहीं जमीन में,
1: बिल्कुल
0: तो क्या करेगी खेती हमारी? तो खेती हमारी खुद ही कह देगी हमारे बस का नहीं है,
1: हाँ
0: इसलिए खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ाओ, जहां से मिल जाए गोबर की खाद, जहां से मिल जाए हरी खाद लाओ और खेत में डालो, और फर्टिलाइजर को हर साल अगर 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद गड्ढे वाली डाल लेते तो आप आराम से 15 से 20% रासायनिक उर्वरक कम कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
1: डॉक्टर जी देखो को जैसे जब ते धान की खेती पैदा हुई है तब ते जो खेतों में तो रेहू चले वो मतलब जो है कि वो जो जमीन उपजाऊ ना ही वो उपजाऊ बन गई
0: वो
1: धान।
0: इसलिए बन गई है कि पानी के अंदर जो था वो सड़ता है, नीचे से हमारी रेह एकुमुलेट होके आ नीचे की जमीनें, नीचे की जमीनों के स्रोत में लवण है, वो पानी के साथ भाप बन के ऊपर आते हैं, पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, रेह वहीं पे हमारे जम जाते हैं। जैसे हम आज से 50 साल पहले 20 साल 20 ही साल की बात कर लो,
1: हाँ
0: कपड़ा धोने के लिए ले आते थे रेह,
1: वही 20 साल की बात
0: लेकिन अब धान करने लगे तो खेत में पानी रहता है तो वो नीचे जाता है, ऊपर आने की संभावना नहीं, इसलिए खेत सही हो गए, वो घुल घुल के नीचे नीचे नीचे जाके कहीं कहीं ज्यादा रेह है तो ऊपरी सतह कॉम्पैक्ट हो गई, पता लगे पानी ही नीचे जाना बंद हो जाए, उसकी जो कैपलरीज हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, चोक हो गई हैं।
1: जी कुछ ऐसा है कि मैं डॉक्टर साहब जैसे कि जब तेज बरसात हुई और पानी पहले से भरा हुआ तो वो बहाव के द्वारा भी जो हो सकता है रेह
0: नहीं
1: बह गया
0: वो भी,
1: वो।
0: क्योंकि थोड़ा इधर का उधर भी होता है तो उससे भी फर्क पड़ता है, और पानी जब लगता है तो कोई भी चीज जमीन के अंदर जड़ तना पत्ती वो सब सड़ जाता है,
1: जी
0: वो खाद का काम करता है।
1: हाँ तो
2: वीरेंद्र जी देखो आज की जो जानकारी भी आशा करें अपने किसान भैया के लिए उपयोगी रही होगी, विषय हो खरीफ फसल में उर्वरकन को उचित प्रयोग, विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत।
1: हाँ समय की बाध्यता है देखते हुए।
2: बिल्कुल वीरेंद्र भैया, खेती से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संग हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने किसान भैया ते अनुमति ले में सब भैया को राम
1: राम राम।
2: राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: हरि ओम चरण के स्वर में अभी आपने श्री हनुमान चालीसा सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज लोक कथा लालच बुरी बला है। कथाकार हैं नंद किशोर वर्मा।
1: मुकंदपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहता हो। वहाँ के चार बेटा हते, बेचारे बहुत ही गरीब परिवार हतो। सबरे बाप बेटा सवेरे से शाम तक मेहनत मजदूरी करके नहीं, फिर भी घर को अपना खर्चा पानी चला पाते, लेकिन घर को फिर भी पूरा नहीं पड़ता। वे सब के सब वहाँ के चारों बेटा बहुत ही लालची हते, हरेक की बात तन में आ जाओ करते और लालच में फंस जाते। घर में बहुत ही गरीबी हती, गरीबी हैवे के कारण एक दिना उन सब चारों भैयन ने यह ठान लेनी कि हमें तो घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा, तभी हमारी गरीबी दूर है जाएगी और हम बहुत ही जल्दी सो धनवान है जाएंगे। चारों भैया एक दिना धन कमावे के लिए अपने गांव से बाहर निकस गए। घूमते घूमते वह चारों भैया हिवाली पहुंच गए और वहां पर घूमते घूमते उनकी भैरव नंद नाम के एक साधु से भेंट भई। साधु भैरव नंद ने उन चारों भैयान से पूछी कि अरे युवको, तुम यह बताओ कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो और कहाँ पर जाने का इरादा है, यहाँ तुम किस कारण से इधर उधर घूम रहे हो। साधु की बात को सुन करके नाही चारों भैया एकदम भयभीत और शांत है गए, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके नाही चारों भैया साधु से बोले, महाराज हम तो बहुत ही गरीब हैं, हम दुखी हैं, हम सब धन कमाने के लिए घर से बाहर निकल गए हैं, हमें तो धन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया करके आप हमें उपाय बताओ। उनकी बात को सुन करके ना ही साधु

भैरव नंद जी ने उन चारों को एक एक लकड़ी दे देनी और बता दियो कि तुम्हारे हाथ से लकड़ी के टुकड़े जिस जगह पर ये गिर जाएंगे वही जगह पे ये जमीन के नीचे दबा हुआ धन आपको बहुत ही अधिक मात्रा में मिलेगा। लेकिन ये बात केवल हिमालय पर्वत पर ही संभव है सकेगी। यह बात को सुन करके ना ही चारों भैया बहुत ही खुश भए और अपने हाथ में लकड़ी के टुकड़ान को लेके ना ही आगे चल पड़े और धीरे धीरे हिमालय पर्वत की तरफ पहुँचने लगे। जैसे ही वह हिमालय पर्वत की तरफ पहुँचे तो अचानक एक लड़का के हाथ में से वह लकड़ी का टुकड़ा अचानक ज़मीन पर गिर पड़ो। लकड़ी का टुकड़ा जिस जगह पर गिरो वही जगह पर चारों भैया ने धीरे धीरे खुदाई करबो शुरू कर दी। जब खुदाई पूरी तरह से है गई तो खुदाई में उनको बहुत ही सारो तांबो मिलो। तांबे को देख करके नहीं वह तो बहुत ही खुश भए और बोले कि यह तो इतना अधिक तांबो है याकू बेच करके नहीं हम अपनो जीवन भर लाभ कमा लेंगे और अब हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत ना है। पर यह बात को सुन करके नहीं बाकी तीनों भैया बोले कि भला तांबा भी कोई धन होता है और इसी बात को कह करके नहीं तीनों भैया आगे चल पड़े और उनमें से एक जिसने तांबे की खुदाई करी थी सबरे तांबे को लेकर के नहीं घर की तरफ चल दियो। पर वे तीनों धीरे धीरे चलते रहे चलते चलते फिर अचानक दूसरे लड़का के हाथ से अचानक लकड़ी का टुकड़ा फिर गिर पड़ो। जा जमीन पर लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ो वही जगह पे उनने धीरे धीरे खुदाई करबो शुरू कर दिनो। वह खुदाई में उनको ढेर सारी चांदी मिल गई। वह चांदी को देख करके नहीं वह तो बहुत ही खुश भए और बोले कि यह चांदी तो हमारे पूरे जीवन भर के लिए काफ़ी है याकू तो बेच करके नहीं हम पूरे जीवन भर अच्छो काफ़ी मुनाफा कमा लेंगे हम सबको धनी बनावे के लिए काफ़ी है। लेकिन बाकी और दोनों भैया यह कहते भाई आगे की तरफ चल पड़े देखो भैया यह चांदी तो आपके लिए ही मुबारक हो पहले तांबा मिला फिर चांदी मिली अब आगे चलें आगे जरूर सोना मिलेगा। और दोनों भैया आगे की तरफ चल पड़े और मन ही मन यह सोचते समझते चले जा रहे थे कि हम तो आगे चल ही रहे हैं पर आगे चलते चले थे हमको जरूर अब सोना ही मिलेगा। वे दोनों भैया थोड़ा और आगे चले तो फिर अचानक उनके हाथ से लकड़ी का टुकड़ा फिर गिर पड़ा। जहाँ जगह पे लकड़ी का टुकड़ा गिरा वही जगह पे उन्होंने खुदाई करवो शुरू कर दी और वह खुदाई में उनको वास्तव में सोनो ही प्राप्त है गयो। वह सोने को देख करके नहीं वो तो बहुत ही खुश भए परंतु चौथा लड़का जाके हाथ में लकड़ी का टुकड़ा था वो वह जगह पर नहीं रुको और निरंतर आगे चलते ही गयो और अपने मन में यह सोचने लगो कि पहले तांबा फिर चांदी और अब सोना निकला तो ठीक है आगे चलकर जरूर कोई ना कोई बहुमूल्य रत्न हीरे जवाहरात आदि हमें प्राप्त होंगे। जब वह आगे जाने लगो तो उसके भैया ने कहा कि जब तक तुम आगे से हीरे और रत्न लेकर वापस आओगे तब तक मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। और यह सुनकर चौथा लड़का आगे चल पड़ो। काफ़ी देर तक चलते चलते वह लड़का थक गयो और उसे काफ़ी ज़ोर से प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकता रहा काफ़ी प्रयास किया पर बापू कहीं पर पानी नज़र ना आयो। काफ़ी पानी के तलाश में वह अपने भैया के पास वापस जाए के लिए रास्ता भी भूल गयो। तभी माने देखी कि सामने से एक अजनबी सो आदमी सीधो साधो मेरी तरफ चलो आ रहे है और वाके शरीर पर भी लहू लुहान है और वाके माथे पर एक चक्र भी घूम रहे है। वह लड़का ने बातें पूछी अरे भैया क्या बात है यह चक्र आपके माथे पर क्यों घूम रहे है क्या यहाँ पर कहीं आस पास जल प्राप्त है सके आप मोकू बता दो क्योंकि मोकू बहुत ही जोर से प्यास लग रही है। लड़का की इतनी बात कहने

0: पर ही वह आदमी के माथे पर जो चक्र घूम रहे हो, वह चक्र उसी समय वह आदमी के माथे से उतरकर वह चक्र उस लड़का के माथे पर आ चिपका और जोर जोर से लड़का के माथे पर घूमता रहा और वाके माथे पे दर्द भी है वे लगा। लड़का ने हैरान रह करके नहीं, वह अजनबी आदमी से पूछी, अरे भैया इस बात को क्या मतलब है? वह अजनबी आदमी लड़का से कही कि मैं भी तुम्हारी तरह से तांबे चांदी और सोने से सब्र न करके और अधिक लालच में यहाँ पर आया था और यह चक्र भी इसी तरह मेरे माथे पर आ गया जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। यह बात को सुनकर के नाहीं वह लड़का उस अजनबी आदमी से बोला कि मगर अब क्या होगा? अजनबी आदमी ने वह लड़का से कही कि अब तो तुम्हारी जान इससे तभी छूटेगी जब तुम्हारी ही तरह से कोई लालची आदमी धन की खोज में इधर उधर भटकता हुआ आएगा और वैसा ही प्रश्न तुमसे पूछेगा जैसा कि तुमने मुझसे पूछा है। फिर वह लड़का ने उस अजनबी आदमी से पूछा कि यह परेशानी मुझे अब कब तक सहन करनी पड़ेगी? उस अजनबी आदमी ने एक बात से कही कि इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहो जा सके है और इतनी बात कहकर वह वहाँ से चला गया। पर तीसरे आदमी ने जब उसका लौटने का इंतजार किया और काफ़ी देर तक वह लौटकर वापस नहीं आया, तब उसको भी उसके न आने की फिक्र हो गई। काफ़ी दूर जाने के पश्चात उसे अपना भाई दिखाई पड़ा, पर उसकी दशा देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। वह ने अपने भैया से कही कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि अधिक लोभ नहीं करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानने वाले थे। आखिर मजबूर होकर वह चक्र को वहीं छोड़कर वापस चलो आए हो। वास्तव में लालच बहुत ही बुरी बला है।
1: अभी आपने जब रजलोक कथा सुनी, लालच बुरी बला है। कथाकार है नंद किशोर वर्मा और अब एक ही संग याचको ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय को निर्दोष बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यप्रणाली में उनसे असावधानी जरूर हुई।
1: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही पड़ेगी।
0: श्री गिरी महाराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह निगरानी में कमी और सावधानी न बरतने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
1: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते

0: हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
1: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया, तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि

0: मिट्टी सुधारकर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
1: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र, प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15,50,00,000 पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5,00,000 रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
3: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, एक रूम लड़कियों के लिए, एक रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आयुष्मान की तरह 5,00,000 रुपए की इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए सभी।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: 20,00,000 रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेंस यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे, मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, मामलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान तायडे, वसंतराव भोजने और PS नवानकर, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, आप हैं समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप और उनके परिवारीजन, बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी तानिया और उनके परिवारीजन, जवानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विविन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव वोटबड़े, अनीता गाठोड़े और रमेश राव गाठोड़े, नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, जालाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान और फरिया ताहिरा, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, बरवड़ बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और उनके परिवारीजन, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी,

कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित प्रथमेश प्रणाली, सर्वद सानवी, हर्षदा देशमुख और उनके परिवारीजन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आइए सुनते हैं आप सबके लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को शब्द अनजान के गीत संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

ये थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार, फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी मनवर और प्रियांशी। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगोल गोपाल, माहेश्वरी परवलिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश और उनके परिवारीजन। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फालना झा। अनारकली बाजार जगराव से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मेहरोत्रा, गभिया मेहरोत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद परी और जयपाल यादव। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन और मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कृणाल मेहरा। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए जुदाई फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जुदाई फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल सुर में सुना, और अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को। फिल्म का नाम है शोर, गीत राजकवि इंद्रजीत का है, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन और उनके परिवारी जैन, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले, जेलो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और

श्रीनिजा, ताजपुर मोरवा समस्तपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री, रंगोली राजनगर बिहार से नवीन सिंह ज्योति सिंह श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल रानी, मिनीपट्टी से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता प्रदीप कुमार नायक गोदावरी राजबहादुर साह शंभू साह रजनी सिंह सागर बाबू जय और वीरू, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और नमित आहुजा, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास करुणा श्रीवास आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुषमा सुरेशे परिधि सुरेशे और मायरा सुरेशे, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा मीना अश्विनी और पिपुल कामड़े, छोटी बलिया कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले जूही इकबाल दोहना सदफ इमरान अहमद फूलवाले और उनके परिवारीजन, नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज नास सलमा नास असद अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य।

पत्थर के सनम, इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। गीत मजरूर सुल्तानपुरी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं ग्राँव जाखड़ गाँव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल।

सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सुहम, सदानंद, विराज, अंशुमन और ओबी, जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, अंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह और शुभांगी धाकड़, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर, नंदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक और संकेत बगाड़े, अजीतनगर मलोट पंजाब से चिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म थी आक्रमण। और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास को, फिल्म का नाम है दयावान, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की थीं। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म है चॉकलेट। पहले सुनिए इस फिल्म में केके की आवाज में गाया ये गीत।

सुनिधि चौहान के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी चॉकलेट। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक

0: शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है, विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि

0: अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
4: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की

जान बचाओ।

अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को भी आपने सुना। फिल्म थी चालबाज, गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनते हैं अलका याग्निक के साथ कुमार सानू को, फिल्म है दिल तेरा आशिक, शब्दकार समीर, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण।

ये थे उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म थी राजकुमार। गीत आनंद बख्शी का था। संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: Mantan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।

0: वाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोरा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोरा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
0: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
1: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका अब सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एबीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और इसमें दो चीजें और हैं। तो एक तो सुविधा बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
0: तो डॉक्टर अरोरा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
1: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपीडी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब यह है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा यह है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है, और दूसरा यह है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है, और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मेरा पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है इलाज करा उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है, तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती हैं आभा आईडी के रूप में।
0: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव

0: बचते हैं।
1: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था। इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है, जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल
0: जी
1: के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं, वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को, तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप आभा आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है, ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये, और कुल मिलाकर ये, मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है, उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है, और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
0: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं, जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
1: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके। तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है, तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं, कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णता उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से, कि ये पूर्णता गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
0: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है, जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
1: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा। आरोग्य सेतु 1.0 जो था, वो कोविड के साथ बना था,
0: जी
1: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है, वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं, और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है, और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक जो, और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो करा जा सकता है। तो कुल मिला

0: करके आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पे इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन की बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में, मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है, और डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने बता 2 दिन खर्च करके गया हूँ अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलोअप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: Darpa.
1: खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं सरस्वती पाठक। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए पहले अयोध्या मंडल

0: स्थानीय खेल खबरों की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित दो दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का बुधवार 1 जुलाई को समापन हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के अटल बिहारी क्रीड़ा स्थल पर इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़ और लंगड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बालक वर्ग के लिए गुल्ली डंडा और कंचा प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित चार दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दाभासेंबर अयोध्या में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना से। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की ओर से सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर।
0: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस समय कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ हैं जो चल रही हैं।
1: अयोध्या में बताना चाह रहा था कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा एक स्टेडियम है, जो कि लगभग 45 एकड़ में ये बना हुआ है और इसमें अलग अलग खेलों की बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोचिंग जो चल रही है वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पर।
0: अभी हाल ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
1: अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को। पूरा राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए प्रतियोगिता का बहुत
0: ट्रायल हुआ था उसका।
1: प्रतियोगिता कम ट्रायल था।
0: जी जी।
1: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते, तो कोई भी जना उसको कर सकते।
0: तो जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए?
1: नेशनल में जाएंगे,
0: राष्ट्रीय
1: यूपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे
0: बैडमिंटन में।
1: इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता है।
0: और इस स्टेडियम

0: इंडिया में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अपने खेल को निखार कर, प्रोग्रेस करके, उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
1: ये खेल तो जो मैंने आपको नाम बताया, ये सारे तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं।
0: जी
1: साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर 7 जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है, और वो भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ बालिकाओं का ही हॉस्टल है। पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियाँ यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना और सब चीज़ की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 7 गेम है।
0: स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। ऐसे में क्या खिलाड़ियों को छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
1: 7 गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारी बालिकाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है, तो उसमें वो लोग कर सकती हैं। और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है। पहले जिला स्तर पे आपने सिलेक्शन होगा,
0: अच्छा
1: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उनको 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंट्रल कोचिंग कैंप कहते हैं।
0: जी जी
1: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी, 2, 5, 7, वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना, खाना पीना सब चीज़ फ्री।
0: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है? क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा।
1: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है। लगभग इसमें हर एक में 20 20 20 20 बच्चे रहते हैं, लड़कियां जो कि खेलेंगी या प्रैक्टिस करती हैं।
0: जी छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
1: देखिए, लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है
0: वार्षिक?
1: वार्षिक, वो करके कोई भी जना कर सकता है, 18 साल से कम वर्ष का। और
0: जी
1: अगर 18 साल से ऊपर है, वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं, या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे, तो उसमें 200 रुपये महीना उसको दे कर
0: जी
1: यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
0: जो
1: अपना।
0: स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
1: नहीं, वो सिर्फ उनको हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है, तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं।
0: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी
1: सारे
0: हाल ही में कौन सी
1: नेशनल,
0: टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
1: नेशनल में अभी जूडो में भी गए
0: अच्छा
1: हैं, हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की। वॉलीबॉल से भी 2 3 लड़कियाँ इस बार सेलेक्ट हुई थी।
0: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
1: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था। जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है, लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा
0: जी
1: लेने भेज दिया, तो वो सब जो सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी है।
0: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों को।
1: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना
0: जी
1: आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती,
0: जी जी
1: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करने।
0: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
1: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से। एक तो पहले एक जिला एक खेल करके एक स्कीम है, जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया, एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट कराए गए, उनको किट और वो सब दी जाती है,
0: अच्छा
1: किट है, जूते, ब्रोजेस, सब चीज़ उनको देके, और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते
0: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो
1: हैं।
0: उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको जरूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है,
0: जी
1: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा, तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है। और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं, तो वो भी उस चीज़ के अलग से, उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं। तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए, हर गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है।
0: जी
1: एथलेटिक्स के लिए पता तो गोला फेंकने के लिए तगड़ा,
0: जी हाँ
1: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड
0: हाइट
1: ज्यादा
0: वगैरह
1: है,
0: भी देखी जाती
1: हाइट
0: होगी।
1: है तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा, तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है।
0: जी
1: आपका शरीर होना चाहिए, पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए, बहुत सारे
0: सबसे
1: चीजें
0: बड़ी ये
1: हैं।
0: चीज़ है कि
1: हाँ,
0: जुनून होना चाहिए।
1: जुनून, बच्ची है उसका
0: अगर जोश नहीं है तो गेम खेल नहीं पाएगा,
1: फिर उसकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ये सब चीजें होंगी, धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
0: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल हैं, खो खो, कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है, और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए हैं,
1: जी जी,
0: तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
1: देखिए कबड्डी में भी है, यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला है वो कोच है, ऐसे ही हमारे कुश्ती भी चलती है
0: जी,
1: कुश्ती हमारे गद्दे पे

0: होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से। तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है, लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने 2 गेम तो पकड़ रखे हैं।
1: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं।
0: जी
1: स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
0: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खासतौर के अयोध्या में,
1: जी
0: क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम
1: जी
0: हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं।
1: जी
0: बस यही है कि माँ बाप जब भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो
1: तो
0: ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ
1: जी
0: पर आके खेले।
1: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम है जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कबड्डी है, क्रिकेट है। जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती
1: जी
0: है,
1: जी
0: ये खासियत है। क्रिकेट जो है हमारा, इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
1: जी जी
0: इतना बड़ा है, जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रो टर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जो
1: जी
0: मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रो टर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है,
1: जी
0: सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ 3 स्विमिंग पूल है, जो लर्निंग
1: अच्छा
0: भी है और मेन भी है, ओलंपिक भी है और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है।
1: अभी जहां मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी प्लेयर्स
0: जी
1: से,
0: जी
1: तो वहां देखा था मैंने, एस्ट्रोटर्फ भी लगी
0: एज
1: हुई है,
0: हाँ
1: सारी
0: वही
1: सुविधाएं
0: जी,
1: हैं।
0: वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज़ है कि अब जो मॉडर्न जमाने में जिस तरह चल रहा है, जैसे एथलेटिक्स है
1: जी
0: सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है,
1: जी जी
0: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम धाबासेमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धाबासेमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धाबासेमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहाँ पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
1: प्रियांश, आप यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
1: और कब से आ रहे हैं यहाँ पर?
2: मैं 1 साल हो गया सर।
1: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
1: कहाँ गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
1: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
1: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
1: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल
1: क्योंकि
2: लेता
1: अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ
2: यस सर।
1: खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
1: राकेश यादव जी, आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं अयोध्या से आता हूँ।
1: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह से सिखाया जाता है, आपको पता कैसे लगा?
3: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने,
1: हाँ,
3: उन्हीं
1: हाँ।
3: के साथ आए।
1: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
3: कबड्डी ही खेलते थे।
1: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें जीत बिल्कुल लगता है कि अब जीत जाएंगे हम?
3: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
1: अच्छा,
3: हाँ ये बढ़िया टेक्निक है।
1: कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत बड़ा गेम होता है।
3: हाँ ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर का कोई वही नहीं रहता, बिना डरे खेलो।
1: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए हैं अभी तक?
3: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
1: ये बताइए कि इस गेम में कितनी आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास करना
3: सर? न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे, 3 घंटे शाम तक।
1: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
3: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना, सर इसको उठा ले खा सकते हैं जब
1: जी,
3: खेलना है तो इतना तो
1: जी जी
3: सुबह डाइट रहता है।
1: और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
3: हाँ ये सब तो अच्छा रहता है
1: ना, और
3: क्योंकि
1: मेंटली भी हम अच्छे रहते हैं।
3: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
1: जी जी, आपका क्या नाम है?
3: सौरभ कुमार।
1: आप कब से आ रहे हैं?
3: 2 साल हो गए।
1: 2 साल आपको हो गया?
3: यस।
1: और कहाँ के रहने वाले हैं?
3: अयोध्या जिला।
1: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे, तो वहाँ से भी और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे, तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
3: ये सीखा सर और मेहनत करें और अच्छा खेलें।
1: हाँ।
3: हम लोग हार गए थे वहाँ जाके 1 पॉइंट से फाइनल।
1: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।
3: यस।
1: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पे काम करते हैं, है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
4: सत्यम पाल।
1: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम धाबासेमर में सीख रहे हैं कबड्डी?
4: जी।
1: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
4: सर ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
4: हम लखनऊ के हैं।
1: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं? कहाँ गए?
4: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में।
1: अच्छा, तो वहाँ पर जो टीमें और आई होंगी उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
4: उनसे मिलकर अच्छा।

0: लगा और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रैटेजीज खेलते हैं,
1: अच्छा,
0: वैसे
1: ब्रीथिंग
0: करते
1: के
0: हैं।
1: लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
0: हाँ
1: क्योंकि
0: होता,
1: इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
0: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
1: आपका क्या शुभ नाम है?
2: कोमल यादव।
1: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
2: हॉस्टल से?
1: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
2: नहीं, बनारस।
1: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो उसको आप सीख रही हैं?
2: 400 मीटर एथलेटिक्स, हमें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
1: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
2: 200, 400।
1: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
2: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 साल हुआ है।
1: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
2: तेजस्विनी साथ,
1: तेजस्विनी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
2: 3 साल होने हैं।
1: लोकल यहीं की रहने वाली है कहीं बाहर से?
2: नहीं, प्रयागराज।
1: प्रयागराज से। यहाँ हॉस्टल में रह के रह
2: आपकी
1: रही?
2: साल चयन हुआ है।
1: तो आप कहाँ कहाँ अब तक खेलने गई हैं?
2: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में ही हुआ
1: तो
2: था।
1: नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी,
2: हाँ,
1: तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?
2: यही हम लोग पासिंग से खेल रहे थे,
1: जी,
2: अच्छा मिला मिला टीम।
1: क्योंकि जब तक हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
2: नहीं,
1: है ना? तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना? ऐसा क्या था हॉकी में?
2: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
1: जी, जैसे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
2: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था इसलिए।
1: जी, तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती हैं?
2: सविता पुनिया।
1: आपका क्या शुभ नाम
3: सर
1: है?
3: शिवम।
1: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
3: सर यहीं बगल से 2-3 किलोमीटर है।
1: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए
3: जी
1: हैं?
3: सर।
1: कहाँ गए हैं?
3: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में
1: अच्छा।
3: 2023 में, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
1: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे,
3: जी सर।
1: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचकर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते
3: जी
1: हैं,
3: सर।
1: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को नई चीज़ें मिलती हैं?
3: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम का कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों का मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: आप क्या शुभ नाम?
4: चंचल मौर्या।
1: चंचल मौर्या, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
4: जी, मैं मलिकपुर गांव से आती हूँ
1: जी,
4: और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ।
1: तो
4: तो
1: आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
4: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है, गांव
1: जी,
4: से ही है।
1: तो
4: मैंने तो हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी तो
1: अच्छा
4: उसको
1: अच्छा
4: देख के।
1: आप कब से खेल रही हैं?
4: मुझे 4 साल हो गए हैं,
1: 4 साल
4: पांच।
1: हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी।
4: जी, नेशनल खेला है,
1: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
4: आंध्र प्रदेश काकीनाड़ा में हुआ था चैंपियनशिप
1: अच्छा,
4: 2025
1: तो
4: में।
1: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
4: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं
1: जी
4: प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस
1: जी
4: नहीं दे
1: जी
4: पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ
1: मेन
4: पे।
1: चीज ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है
4: जी,
1: वहाँ पर।
4: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा
1: हाँ
4: खेल
1: हाँ
4: सकते
1: हाँ
4: हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो
1: जी,
4: सारी चीज सीखने को मिली मुझे।
1: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
4: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते
1: तो
4: हैं।
1: आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
4: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अविश।
1: आपका शुभ नाम?
2: स्वर्णिलाक्षी।
1: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई
2: सर,
1: खेलने के
2: हम ये
1: लिए?
2: बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस, सर यहाँ से आते हैं।
1: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको
2: यस
1: स्टेडियम
2: सर।
1: मिल गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
2: सर मैं बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में।
1: अच्छा जी, इसके अलावा जब कभी आप खाली होती हैं तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं,
2: यस
1: उनको
2: सर,
1: अभी आप देखती
2: यस
1: होंगी,
2: सर, फोन पे
1: तो
2: हॉकी।
1: आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
2: सविता पूनिया।
1: चलिए, आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी का। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को 1 ओवर बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाज

का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच ही जीते, लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही T20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये चौथी भिड़ंत थी। इसके पहले तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और चौथी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने 7वीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड एक एक बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए, ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से 7वीं बार 7वें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। हालांकि उनका पहला इंटरनेशनल मैच जीत के साथ यादगार नहीं बन सका। इंग्लैंड ने 191 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। पाकिस्तान के हसन रजा सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू कर लिया था। और उधर महान बल्लेबाज द वॉल के नाम से मशहूर और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंडर 19 में अपना सफर शुरू कर दिया है। श्रीलंका में श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल वनडे मुकाबले में अन्वय को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीत कर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको,
इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिश्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और

कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ा जाएगा। निशानेबाजी, होनहार निशानेबाज

0: खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोल रहित रहा। इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र AJ अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राग चंद्रकौंस में ख्याल गायन। कलाकार हैं अजय चक्रवर्ती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग चंद्रकौंस में ख्याल गायन, कलाकार थे अजय चक्रवर्ती। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।